एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 और 10 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए हिंदी समाचार सुनने के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध

0: के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। श्री अरविंद का कथन है, सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों को क्यों प्यार करता है? अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। प्रस्तुत है झरोका। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:35 पर अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 275। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, भाग 9, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। सात बजे से सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। पंद्रह मिनट पर त्रिवेणी। 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा आज फिल्मकार सावन कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनिएगा कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। ग्यारह बजे विविधा में सुनिए भारतीय फिल्म में बंदे मातरम, संकल्पना मिलिंद सबनीस, संयोजन शिल्पा सबनीस, संपादन सहयोग प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। बारह 12:05 पर यादों की महफिल, 1 से सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे। मन जाएगी 3 से। 3:30 पर नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज सुनेगा किसी एक फूल का नाम लो, इसका दूसरा भाग, मूल गुजराती लेखक मधुराय, रूपांतरकार ज्योति व्यास, निर्देशक सुशील बैनर्जी। शाम 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 से विशेष जयमाला के अंतर्गत सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वी चंद की शौर्य गाथा सुनिएगा, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका सेंट की बोतल, लेखन हरी मेहरा, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर चित्रलोक। 9 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। 10 छाया गीत, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र नेगी। 10

30 मिनट पर ढलती जाए रात और 11 बजे विविधा आप सुन रहे थे। आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 275।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 275।
1: संगीत सरिता।

0: रसिक श्रोता नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा और हमारी अतिथि कलाकार हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोता मित्रों, कल हमने शुभा जी से दो राग सुने, चंद्र मल्हार और अरुण मल्हार। शुभा जी, ये दोनों राग प्रचलन में तो मतलब ज्यादा कर
1: नहीं, इतने ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेंगे इतने, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब और किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि इसी प्रकार के जो मिश्रित राग हैं वो ऐसे इतने असंख्य हैं कि ज़रूर, वैसे तो भातखंडे जी की किताबों में भी इन रागों की चर्चा है
0: जी,
1: तो अवश्य बंदिशें होंगी, पर मुझे जो मिली हैं वो ये बंदिशें मिली।
0: तो ये हम ये कहें कि ये अक्षोभ राग ही हैं जैसे
1: एक तरह से।
0: तो श्रोता मित्रों, कुछ अक्षोभ बंदिशें और राग हमने सुने हैं और आज अब फिर शुभाजी की तरफ मैं बढ़ती हूँ और उन्हीं को पूछती हूँ।
1: मुझे लगता है कि हम क्यों ना अब ठुमरी दादरा की ओर चलें, आपका क्या ख्याल है?
0: ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है।
1: तो एक दादरा मुझे याद आ रहा है जो कि काफ़ी सुना होगा लोगों ने, लेकिन उसका जो साहित्य है वो ऋतु संबंधी है, वर्षा ऋतु संबंधी है और बहुत खूबसूरत है।
0: वैसे दादरा ताल में जो गाई जाती हैं रचनाएं
1: जी,
0: उन्हीं को दादरा कहेंगे?
1: दादरा ताल में भी गाई जाती हैं और कुछ कुछ कहरवा ताल में भी गाई जाती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा करने की कोशिश की है और एक जो परिभाषा है वो ये है कि दादुर की जो गति है उससे मिलता जुलता जो जो एक लचक उस गीत में है
0: थुमक,
1: वो हाँ ठुमक है, वो दादरे में मिलती है और ठुमरी में विस्तार का की जगह ज्यादा मिलती है। गति भी उसकी कई बार दादरे से ज्यादा थमी हुई होती है, लेकिन हमेशा ऐसे कह देना कि नहीं यही सही है हमारे संगीत में जरा कठिन होता है।
0: जी
1: तो ये दादरा, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें।
0: जी
1: भीगी जाऊं मैं गुइया,
0: हाँ,
1: बचाए लइयो।
0: अच्छा,
1: क्यों बचाए लइयो, किस चीज से बचाए लइयो? झरन लागी बदरिया गुइया, भीगी जाऊं मैं गुइया, बचाए लइयो। ये स्थाई है इसका। और कंचुकी मोरी भीजत सारी, लाज आवत देखत नारी, शर्मीली है। बिनती करो करहू छुपाए लइयो गुइया, बचाए लइयो, भीगी जाऊं मैं गुइया, बचाए लइयो।
0: जी, श्रृंगार का कितना अनूठा और तरल सा एक भाव है इसमें, बहुत ही सुंदर। लेकिन शुभा जी, एक सवाल मेरे मन में और है
1: जी।
0: दादरा जिसे कहा जाता है उसमें जो शब्द होते हैं, जो पद हो, पद कहूँ या बंदिश कहूँ
1: जी,
0: तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं?
1: जी हाँ, बहुत मतलब दादरा आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें होली का वर्णन मिले, आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें विरह का वर्णन मिले, ऐसा भी मिलेगा जिसमें के छेड़छाड़ की बात हो, बरजोरी की बात हो, वो भी है। और ऋतु संबंधी भी चीज़ें हैं जिसमें कि एक एक अनोखा एक नखरा सा है। यूं तो ऐसे कोई भीग जाता है तो ऐसी तो बड़ी बात नहीं है, पिघल नहीं जाएगा कोई, लेकिन वो उसी में वो जो मिठास है, जो एक लजीलापन है वो बड़ा खूबसूरत है
0: जी।
1: और इसे मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा।

0: लेकिन ठुमरी दादरा में एक और भी प्रथा रही है कि इन पंक्तियों को उभारने के लिए, या इनका जो भावार्थ है उसे उभारने के लिए, या एक नयापन लाने के लिए, स्वर विस्तार तो होता ही है, बढ़त तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य के साथ भी खेल हो सकता है। तो इन्हीं पंक्तियों को आगे पीछे तो करते ही हैं, बोल बनाते तो हैं ही, लेकिन ये भी कुछ लोग करते हैं कि दोहे, शेर या अन्य किसी कविता की कुछ पंक्तियां लेके उन्हें इसमें साथ साथ गिरह लगा दी जाए,
1: जी
0: जो उन्हें जोड़ दिया जाए, इस सिर्फ इस बात को और उभारने के लिए कि क्या कहा जा रहा है। अब इसमें झरन लागी बदरिया गुइयां, यदि इसी को उभारना है तो संभव है कि मैं किसी दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां ले लूं, और मुझे ब्रजभाषा के एक आधुनिक ही उनको कवि आप कह सकती हैं, उनका नाम है आत्मप्रकाश शुक्ला,
1: जी
0: उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि बरखा के बारे में हैं। और देखिए कि बरखा को नारी का प्रतीक बना के उन्होंने लिखा है इसको। सांझ ने आंज दयो कजरा,
1: आंच मतलब आंख में,
0: हाँ काजल
1: हाँ
0: डालने को,
1: हाँ सांझ
0: काजल
1: ने काजल डाला है,
0: हाँ
1: सांझ ही जैसे काजल बनके आंखों में
0: बिल्कुल
1: आई है।
0: बिल्कुल। सांझ ने आंज दयो कजरा, एक भौं पे काम कमान चढ़ाई, केसन बीच बंधे बदरा,
1: केसन के बीच बदरा।
0: बादल बंधे हैं क्योंकि इतना इतने काले हैं केश
1: बहुत
0: और
1: अच्छे।
0: सघन है, केसन बीच बंधे बदरा, पुरवैया ने जूरा में गांठ लगाई, तो जो जूड़ा बना है उसमें पुरवैया ने गांठ लगाई है।
1: जी
0: मांग में दामिनी सी दमके, द्युति आनन देखी घटा घिर आई, नेह के नीर भरे गगरा, बहुत ही सुंदर है, नेह के नीर भरे गगरा, ढरकाई बे को बरखा ऋतु आई।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: तो यदि मैं बढ़त कर रही हूं झरन लागी बदरिया गुइया, तो मैं ऐसी पंक्तियां भी ला के,
1: एक
0: और
1: नई मिठास
0: जी
1: घुल जाएगी
0: तो
1: इसमें
0: वो प्रयत्न करेंगे अभी हम
1: जी, और हम सुनेंगे।
0: जरूर।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम को लेकर कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। नरसी भगत फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे के सर में। जी एस नेपाली ने इस रचना को लिखा था और रवि ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त के स्वर में भरत व्यास की ये रचना। संगीतकार हैं वसंत देसाई, फिल्म का नाम तूफान और दिया।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।

0: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: को छोड़ के कहाँ जाओगे?
1: अच्छा?
0: या तुम बड़ा दुख पाओगे? अब जान भी लो, पहचान भी लो, नजरें ये प्यार की हमको छोड़ के।

0: श्रीमती 420 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज़ थी, जान निसार अख्तर के बोल थे, ओ पी नैयर की तर्ज थी।
1: एक आवाज़

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: हम जागे जग सोए रियाली, ये गीत आप सुन रहे थे रंगीन रातें फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। केदार शर्मा ने इस गीत को लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता

0: था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके,

0: खड़े हैं। सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ गई।
0: गया एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

सती परीक्षा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की थी। नासमीन इस गीत को लिखा था और सन्मुख बाबू का संगीत था।

कैदी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। जान एसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज़ अहमद का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्द।

आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर, यानी 9 अगस्त का इतिहास में क्या महत्व है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त वर्ष का 221वां दिन है, यानी लीप ईयर की बात करें तो 222वां दिन, यानी साल 2026 में अभी 144 दिन बाकी हैं। अब आइए श्रोताओं एक नज़र डालते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आज ही के दिन 1925 ईस्वी को काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था।

रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1999 ईस्वी को नियुक्त किया था और नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी यात्रा के बाद कई दिनों की यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। 2006 में आज ही के दिन नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना ने आज ही के दिन परमाणु हमला

करने के में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 2012 ईस्वी को किया था।

अब आइए एक नज़र डालते हैं उन महान व्यक्तियों पर जो आज के दिन जन्म लिए थे। लॉर्ड लिटन द्वितीय का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो 1922 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर थे। विख्यात शिक्षा शास्त्री रंगनाथन एस आर का जन्म आज ही के दिन 1892 ईस्वी को हुआ था। उपन्यासकार शिवपूजन सहाय का जन्म भी 9 अगस्त 1893 ईस्वी को यानी आज ही के दिन हुआ था। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि गंगाधर मेहरे का जन्म भी 1862 ईस्वी को आज ही के दिन हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का जन्म भी 9 अगस्त 1909 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई का जन्म भी आज ही के दिन 1915 ईस्वी को हुआ था। हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु का जन्म भी 9 अगस्त को ही 1937 ईस्वी को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता महेश बाबू का जन्म भी 1974 ईस्वी को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म भी 9 अगस्त 1991 ईस्वी को हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्यकार के प्रसिद्ध गद्यकार एवं पत्रकार मनोहर श्याम जोशी का भी जन्म 1933 ईस्वी को आज ही के दिन हुआ था।

अब आइए एक नज़र डालते हैं उन महान व्यक्तियों पर जो आज के दिन हमसे अलविदा कह गए। अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल आज ही के दिन 2016 ईस्वी को हमसे अलविदा कह गए, सदा के लिए चले गए। और प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार रामकिंकर उपाध्याय का निधन भी आज ही के दिन 2002 ईस्वी को हुआ था। श्रोताओं, अब जानते हैं आज यानी 9 अगस्त के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। आज भारतीय क्रांति दिवस, या ये कहिए कि अगस्त क्रांति दिवस है। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और व्यापक जन आंदोलन था। आज नागासाकी दिवस भी है और विश्व आदिवासी दिवस भी।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: अब आइए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। कल यानी 28 अगस्त को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बेदा सासाराम स्थित पुलिस महिला बटालियन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला बटालियन बेदा के पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती स्वाति एवं जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद शमीम अंसारी जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम रोहतास द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, यौन उत्पीड़न की विभिन्न परिस्थितियों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा शिकायतों के निष्पक्ष एवं गोपनीय निस्तारण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भावमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की स्थिति में पीड़िता को बिना किसी भय या संकोच के निर्धारित पॉस एक्ट की प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत यानी माई भारत रोहतास द्वारा 8 अगस्त 2026 को सासाराम स्थित SP जैन कॉलेज ऑडिटोरियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार, सामाजिक सेवा एवं राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान नशे के स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए लोकगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, भाषण, शॉर्ट फिल्म या रील कहिए, स्लोगन, लेखन एवं

स्लैम पोएट्री जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। नशा मुक्ति विषयक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला युवा अधिकारी सुश्री कोमल निगम ने किया। इस अवसर पर युवाओं ने नशे से दूर रहने, दूसरों को भी जागरूक करने तथा नशा मुक्त युवा, स्वस्थ समाज, विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प भी लिया।

कला एवं संस्कृति विभाग बिहार पटना के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 के प्राप्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में दिनांक 8 अगस्त 2026 को बैठक संपन्न की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी सहित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सह अपर जिला दंडाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जीविका DPM, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक रूप से हर घर झंडा फहराने पर विशेष रूप से निर्देशित किया गया। बैठक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2026 दिनांक 9 अगस्त यानी आज से 17 अगस्त तक भव्य रूप से मनाने हेतु सभी पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए मनाने एवं हर पंचायत के दलित महादलित टोलों में झंडा वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी मंत्री एवं जिला पदाधिकारी की अगुवाई में दिनांक 12 अगस्त को प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चे, आमजनों, NCC स्काउट एवं गाइड के साथ साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी समारोह परिसर से गांधी चौक, निशान सिंह चौक से होते हुए पुनः समारोह परिसर में यह प्रभात फेरी खत्म हो जाएगी। 9 दिन तक चलने वाला हर घर तिरंगा कार्यक्रम संबंधित फोटो और वीडियो को साझा करने का निर्देश दिया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।

श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिलवाले से। इसके गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और आवाज़ें हैं दोस्तों कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन की।

श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। रोज़ की तरह हमारे पास आज भी कई समाचार पत्र हैं, जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। जो सीखेगा वो जीतेगा, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस, प्रधानमंत्री के शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईटीआई दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि तेज़ी से बदलती दुनिया और तकनीक के दौर में वही आगे बढ़ेंगे जो लगातार सीखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कैंपस लाइफ और असल ज़िंदगी में बड़ा अंतर होता है। DDU गया के बीच विशेष ट्रेन शुरू, 8 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी ट्रेन।

लोगों को उनकी भाषा में सुनना, सम्मान देना ज़रूरी। सीजेआई नालसा के क्षेत्रीय सम्मेलन में सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि न्याय का मतलब सिर्फ केस का फैसला कर देना नहीं। न्याय तभी सार्थक है जब सामने आए व्यक्ति को महज केस नंबर नहीं, इंसान के रूप में देखा जाए, उसकी बात उसकी भाषा में सुनी जाए और उसके सम्मान का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा, सुनवाई करते वक्त हमें केस को नहीं व्यक्ति को देखना चाहिए।

इसी के साथ है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार, मुमताज अहमद को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। 8 बज चुके हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुदुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त

0: राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग

0: है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहाँ निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेनजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेनजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाश
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। 8:15 हो चुके हैं प्रातः के। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत।

ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म हकीकत से। इसके गीतकार हैं कैफी आज़मी और संगीतकार मदन मोहन। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का पसंदीदा कार्यक्रम पसंद आपकी, पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज अहमद का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। कार्यक्रम की पहली पेशकश

फिल्म का नाम है लावारिश, आवाज़ है अमिताभ बच्चन की। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, मशकूर आलम, शमा परवीन। आप हैं नाज मंजिल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासा हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। और

बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासा हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख। और कोकिला वारा औरई ज़िला मुजफ्फरपुर से आप हैं मोहम्मद फैसल शेख नुजहत जहानाज। शेख टोली समस्तीपुर से आप हैं मोहम्मद शाहनवाज परवेज मुसरत जहानाज। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप यानी राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंक रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता। साफ तो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से आप हैं मंजीव गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यवंशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माघवी, साध्वी और भी बहुत से इनके सारे दोस्त। आप हैं ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये फरमाशी गीत।

0: ये वो भी ऐप से,
1: वाह। अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म राजा और रंग से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ें हैं दोस्तों आशा भोसले और साथियों की। फरमाइश करने वाले आप श्रोतागण हैं थाना मोड़ गढ़नोखर रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। नया नगर सुपौल से आप हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। और इसी गीत के लिए फरमाइश की है आप सबों ने भी, ग्राम बेलाढ़ी वार्ड नंबर 8 सासाराम से उपेंद्र पासवान, दिलीप कुमार, सुरेंद्र महतो और उनके घर के सभी सदस्य, और सुदामा राम ये भी बेलाढ़ी के रहने वाले हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम की आखिरी जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म हीरो से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ें हैं दोस्तों अनुराधा पौडवार और मनहार की। फरमाइश करने वाले आप श्रोतागण हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया, नवादा, गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां, गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, और आप हैं सिराजपुर, गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन, अर्श बाबू, जतुका, किशनपुर से आप हैं आलम, दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का फिल्म हीरो का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। मुमताज़ अहमद को दीजिए इजाज़त। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं संदेश। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए आज से पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। और डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% छूट देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रेरणा का यह अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस साल तिरंगे के उत्सव में नई पहलें शुरू की जा रही हैं।
1: इस बार देश वंदे मातरम के 150 वर्ष सम्मान के साथ

0: मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, नगर निकायों और पंचायत स्तर पर भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि सभी नगर निकायों के अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज से भावनात्मक रूप से जोड़ना और अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत कल राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं करेंगे। तिरंगा यात्रा जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक जाएगी। इसमें राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि आज से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान तिरंगा यात्रा, सेल्फी विथ तिरंगा, तिरंगा थीम पर आधारित प्रकाश सज्जा, वंदे मातरम का सामूहिक गान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड को 4000 तिरंगा उपलब्ध कराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पुस्तकालय की समीक्षा बैठक में कहा कि इसके लिए देश भर के प्रमुख पुस्तकालयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उनकी विशेषताओं के आधार पर बिहार विधानमंडल पुस्तकालय को समृद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव की अध्यक्षता में एक टीम प्रमुख पुस्तकालयों का दौरा कर अध्ययन करेगी। अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में पुस्तकालयों का स्वरूप अत्यंत समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत होना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी करेंगे। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उप संवर्ग और शोध तथा प्रशिक्षण उप संवर्ग के सभी पदाधिकारी और डायट के प्राचार्य भी शामिल होंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक स्थानांतरण, स्मार्ट क्लास, ई शिक्षा कोष, व्यवसायिक शिक्षा, डिजिटल नवाचार, AI के बेहतर इस्तेमाल समेत अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा सहयोग के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने का प्रयास होगा।
2: शिष्टाचार मुलाकात की और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा है, PPP मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612।

0: 222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा पटना से होकर गुजर रही है, जिसके कारण राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और बक्सर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के सिसवन में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर कल देर रात पटना और आसपास के कुछ भागों में भी तेज बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्री जत्थे को रवाना नहीं किया गया। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी मेल पर विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। पटना जीपीओ के चीफ पोस्टमास्टर राजदेव प्रसाद ने बताया कि 12 अगस्त से इनलैंड स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए लिफाफे के ऊपर राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि एक ग्राहक इस योजना के तहत एक बार में अधिकतम 5 स्पीड पोस्ट राखी मेल ही बुक करा सकेंगे। मध्य पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दानापुर और भागलपुर के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का परिचालन पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, क्यूल और सुल्तानगंज के रास्ते किया जाएगा। इसमें कुल 16 कोच होंगे। ये ट्रेन आज और कल दोपहर 3:30 पर दानापुर से रवाना होगी। वहीं रेलवे आज से 17 अगस्त के बीच दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया के बीच भी अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। और अब खेल की खबरें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न 20वीं ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में बिहार के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। सीनियर वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक और महिला वर्ग में श्वेता कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 5वें राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता में जमुई के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 7 पदक जीते हैं। अंडर 14 बालिका वर्ग में गोपालगंज की सौम्या कुमारी और अंडर 14 बालक वर्ग में जमुई के हरिओम कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। पटना में खेली जा रही द्वितीय बिहार राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर पटना की श्रीजा ने महिला एकल वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पटना के रणवीर सिंह ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जगह पक्की की है। मोतिहारी में खेली जा रही 36वीं राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नवादा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन अलग अलग कैटेगरी में जिले के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई कर लगभग 278 लीटर विदेशी शराब और बियर जब्त किया है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मधुबनी जिले के औसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान एक मैजिक सवारी वाहन से 41 किलो गांजा जब्त किया है। भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राकेश रंजन को डाक से मिले पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। शेखपुरा जिले के बरबीघा में मिशन थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्यार्थियों के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलकर साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 18 जिले मानव तस्करी में अति संवेदनशील, तस्करों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका

0: में वीजा प्रकरण पर लिखा है, नौकरी जाने पर कामगार को परिवार समेत तुरंत छोड़ना होगा अमेरिका। दैनिक भास्कर मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, बिहार में 35% कम बारिश, 13 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। प्रभात खबर ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लिखा है, जो सीखेगा वो जीतेगा, जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। राष्ट्रीय सागर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से लिखा है, बिहार के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिल रही है नई पहचान। आज अखबार लिखता है, 16 अगस्त तक ई केवाईसी नहीं कराई तो गैस सब्सिडी बंद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू, प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, विधानमंडल पुस्तकालय को देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए आज से पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। और डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्पीड पोस्ट से भेजी जाने वाली राखी पर डाक शुल्क में 10% छूट देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तमाम मौजूद सामईन की खिदमत में हम एक बार फिर से आदाब अर्ज करते हैं।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 9:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले हमारे केंद्र से कार्यक्रमों की एक झलक।

प्रातः के 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मलिका के अंतर्गत हिंदी फिल्म संगीत। और 9:30 पर आप सुनिएगा सुबह के विविध भारती के कार्यक्रम आज के।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: अनुराग, जरा खिड़की से बाहर तो देखो, बादलों ने जैसे आसमान पर अपना डेरा डाल दिया है। पेड़ों ने हरी चूनर ओढ़ ली है। मिट्टी भीनी भीनी खुशबू बिखेर रही है। मंदिरों की घंटियाँ गूंजने लगी है और लगता है प्रकृति मुस्कुरा कर कह रही है, सावन आ गया है।
0: बिल्कुल, और आज सुबह जब मैं घर से निकला तो हवा में एक अलग ही ताजगी थी। पेड़ों की पत्तियां जैसे नहा उठी थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को बार बार रोक रही थी।
1: और क्या, सावन का यही तो जादू है। लगता है जैसे प्रकृति ने हरे रंग की नई चादर ओढ़ ली है। खेत मुस्कुरा रहे हैं, नदियाँ गुनगुना रही हैं और बादल जैसे धरती से मिलने चले आए हों।
0: सच कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सावन केवल बारिश का महीना नहीं बल्कि मन को भी भीगने का निमंत्रण देता है।

0: बिल्कुल, जैसे तपती हुई धरती पहली वर्षा की बूंद से तृप्त हो जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी भक्ति की शीतल धारा से नया जीवन पा लेता है। इसलिए भारतीय परंपरा में सावन को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना गया है।
1: और दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित है, लेकिन सावन हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा अपने भीतर झांकना भी है।
0: सही कहा, जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब जीवन में शांति आती है, संतुलन आता है और हमारे विचार भी निर्मल होने लगते हैं। यही तो सावन का सबसे सुंदर संदेश है।
1: और तो और, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 30 जुलाई 2026 से सावन मास का शुभारंभ हुआ है। पूरे महीने देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है
0: और सबसे खास होते हैं सावन के सोमवार। सुबह सुबह मंदिरों की घंटियां हर हर महादेव का उद्घोष और हाथों में जल लिए श्रद्धालु, यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। लेकिन

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आए। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित

अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के एम फिरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेरेवांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर। संकलन और वाचन है वंदना कुमारी का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार।

0: जय हिंद बच्चों,
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आज के अंकुर कार्यक्रम में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का नमस्कार।
0: कहिए बच्चों, कैसे हैं आप सब?
2: इस समय तो हम थोड़े व्यस्त हैं दीदी,
3: 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है ना, इसीलिए।
0: यानी आप सब 15 अगस्त पर कुछ प्रोग्राम वगैरह में भाग ले रहे हैं? और बच्चों, पता है ना, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बहुत ही उत्साह और राष्ट्र प्रेम के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त को ही हमारा देश आजाद हुआ था और हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली थी। यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन मौका देता है उन महान स्वतंत्रता सैनिकों को याद करने का, जिन्होंने हमें एक शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हीं के बलिदानों की वजह से ही तो आज हम स्वतंत्र हैं। देश की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही हम उन महान लोगों को याद करते हैं जिनके कठिन संघर्षों की वजह से हम अपनी आज़ादी का उपभोग करने लायक बने हैं और अपनी इच्छा और मर्जी से खुली हवा में सांस ले सकते हैं।

0: अंग्रेजों से आज़ादी पाना हमारे महापुरुषों के लिए बेहद मुश्किल कार्य था, लेकिन हमारे देश के महापुरुषों ने लगातार प्रयास करके आज़ादी प्राप्त कर ली। हमें उनके कार्यों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दीं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे की ओर ले जाएं और भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएं। आज हमारा देश प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल और लगभग सभी क्षेत्रों में दुनिया को चकाचौंध कर रहा है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें मेहनत करनी है। आप सब बच्चे क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में? किस तरह के परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने देश में? किस तरह के उम्मीदों के सपने हैं आपकी आंखों में? आइए जानते हैं आप सब बच्चों से ही। सबसे पहले अंजलि, आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं अपने देश के बारे में?
1: दीदी, मैं चाहती हूँ कि हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा देश स्वच्छ और सुंदर दिखे। आज सभी जगह स्वच्छता की बात हो रही है, लेकिन अभी भी हमारा देश पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव जरूर आए हैं। आज जहाँ तहाँ कचरा फैला हुआ देखने को मिल जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि ये कचरा और गंदगी सरकार की साफ करेगी। ऐसा नहीं है, यह तो हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह देश हम सबका है। इसलिए हम सबको मिलकर यह काम करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। हम स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ बनकर रहेंगे, ऐसा है मेरा सपना।
2: और मैं बताऊं दीदी, क्या सोचती हूँ मैं देश के बारे में?
0: बिल्कुल बताइए श्रुति, हमें भी जानने की इच्छा है आपके सपनों के बारे में।
2: दीदी, यह तो सब कोई जानता है कि हमारा मेडिकल साइंस काफी आगे है, अनेक रोगों का इलाज संभव है, लेकिन फिर भी साधारण सी बीमारी में अनेक बच्चों की मौत हो जाती है। मैं कोशिश करूंगी कि चिकित्सा की सारी सुविधाएं गरीब लोगों तक आसानी से पहुंचे। इलाज की कमी के चलते कोई बच्चा मरे नहीं, हर बच्चे की बीमारी का तुरंत इलाज हो, ऐसा होगा हमारा देश।
0: और आइए देखते हैं हसन जमाल क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में।
3: दीदी, मैं तो खूब सारे पेड़ लगाकर अपने देश को हरा भरा कर दूंगा। हर साल पेड़ लगाकर उसकी देखभाल भी करूंगा। ऐसे सभी कार्य करूंगा जिससे हमारी पृथ्वी स्वच्छ रहे। कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालें और कपड़े या कागज के बने थैलों का उपयोग करें, ऐसा सभी के लिए जरूरी बना दूंगा। हमारा पर्यावरण सुंदर रहे इसके लिए पानी और बिजली की भी बर्बादी रोकूंगा। सभी को समझाऊंगा कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, तभी हम खुश रह सकते हैं।
0: और खुशी, लगता है आप भी कुछ कहना चाहती हैं।
4: जी दीदी, यह तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार के बिना हम अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। इसीलिए सभी बच्चे स्कूल जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मैं इसके लिए प्रयास करूंगी। मैं तो देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ आज भी स्कूल नहीं जाती हैं। मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगी और सभी लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका दूंगी।
0: और देखते हैं कि विक्की क्या सोच रहे हैं अपने देश के बारे में, अपने सपनों के बारे में।
5: दीदी, मैं तो ऐसे भारत देश में रहना चाहता हूँ जहाँ एक दूसरे से भेदभाव ना हो, बच्चों में संस्कार इतने अच्छे से हो कि वे बड़े होकर छेड़छाड़ जैसी गंदी हरकतों के बारे में सोचे ही नहीं। भ्रष्टाचार और सभी बुराइयों को दूर भगाकर हम एक स्वस्थ समाज और देश बनाएंगे। हंसता खिलखिलाता होगा हमारा भारत देश।
0: बिल्कुल, जिस देश के बच्चे संस्कारवान होंगे, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी जहाँ के कण कण में बसा होगा, निश्चित ही तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। विश्व को शांति का संदेश देने वाला हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। ये बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, ऐसे देश के सम्मान को दिल में बसाए रखना। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: इस गीत के बाद समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए सुनाती हूँ आपको सौरभ के देश प्रेम की कहानी। यह कहानी है एक होनहार और देशभक्त बालक की। सौरभ नाम था उस बालक का। सौरभ का एक दोस्त था विक्रम। दोनों के घर आसपास ही थे। वे एक ही स्कूल के एक ही कक्षा के छात्र थे। वे साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ अपने घर लौटते थे। दोनों के पिताजी भी एक ही ऑफिस में काम करते थे। सौरभ और विक्रम दोनों को ही प्रतिदिन जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। विक्रम अपने सारे पैसे स्कूल में ही खर्च कर डालता था। कभी चाट खाता तो कभी अन्य चीज। उसके अभिभावक कभी यह तक नहीं पूछते थे कि वह पैसा किस चीज में खर्च करता है। धीरे धीरे विक्रम काफी चटोरा बन गया। वह इस बात पर भी गौर करता था कि सौरभ चीजें खरीदकर बहुत कम खाता है। वह अपने घर से ही खाना या नाश्ता ले आता और वही खा लेता। विक्रम मुझसे प्रायः कहता, चलो भी हम सभी दोस्त मिलकर चाट खाएंगे, परंतु सौरभ बड़ी विनम्रता से मना कर देता। वह बहुत कम या कभी कभी उनके साथ जाता था। इस पर विक्रम को बड़ा गुस्सा आता। उसने अपने दोस्तों में यह बात फैला दी कि सौरभ कंजूस है। अब तो सारे साथी उसे चिढ़ाया करते, सौरभ कंजूस, सौरभ कंजूस। शुरू शुरू में तो सौरभ इतने सारे बच्चों के यूं चिढ़ाने से मायूस हो जाता। फिर उसने सोचा कि यदि मैं इनके सामने रोऊंगा या चिढ़ने लगूंगा तो ये सब मुझे तो और भी चिढ़ाएंगे। बच्चे जब चिढ़ा चिढ़ा कर थक गए और सौरभ पर कोई असर न पड़ा तो आखिर में वे ऊब गए। एक दिन उनके क्लास का एक छात्र विनय ने पूछ ही दिया, सौरभ तुम्हें जेब खर्च के लिए रोज पैसे तो मिलते होंगे ना? हाँ मिलते तो हैं, सौरभ ने उत्तर दिया। तो फिर तुम इतने कंजूस क्यों हो? क्यों उन्हें खर्च नहीं करते? विनय ने पूछा। सौरभ बोला, तुम मुझे कंजूस तो नहीं पर हाँ मितव्ययी जरूर कह सकते हो। इस पर विनय चिढ़कर बोला, कंजूस और मितव्ययी में क्या अंतर है? सौरभ समझाते हुए बोला, भाई अंतर है, बहुत अंतर है। मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी बिल्कुल नहीं। मितव्ययिता तो फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच की वस्तु है। फिजूल खर्ची तो बिल्कुल भी ना करें। यह बात तो अमीर और गरीब सभी की

0: मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी बिल्कुल नहीं। मितव्ययिता तो फिजूल खर्ची और कंजूसी के बीच की वस्तु है। फिजूल खर्ची तो बिल्कुल भी ना करें। यह बात तो अमीर और गरीब सभी के लिए समान रूप से जरूरी है। तभी एक लड़का विक्रांत कहने लगा, उपदेशक महोदय, हम बात समझ नहीं पाए। सौरभ ने फिर समझाया, देखो भाई, कंजूस तो वह होता है जो जरूरत होने पर भी पैसा खर्च नहीं करता। ऐसा पैसा व्यर्थ है जो न तो अपने काम आए न दूसरों के। लेकिन मितव्ययी वह होता है जो यह सोच समझकर पैसा खर्च करता है कि कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। और फिजूल खर्ची वह होता है जो बिना सोचे समझे हर कहीं धन खर्च कर देता है। ओह छोड़ी यह बातें, अब बताओ मितव्ययी बनने से लाभ भी क्या? पंकज ने कहा, ऐसा ना बोलो। सौरभ ने फिर समझाते हुए कहा, फिजूल खर्ची बाद में बड़ा दुख देता है, चाहे वह धन का हो, समय का हो या फिर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का हो। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतकर ही सदैव सुखी, संतुष्ट और स्वाभिमानी जीवन जिया जा सकता है। किसने सिखाया है तुम्हें यह सब? विनय तुरंत ही पूछने लगा। मेरे अपने पिताजी और माताजी ने, सौरभ ने गर्व से सर उठाकर कहा। विक्रम ने पूछा, अच्छा जो पैसे तुम्हें मिलते हैं उनका तुम करते क्या हो? उन्हें मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, जब कोई आवश्यकता होती है तो वह चीज़ ले लेता हूँ, सौरभ बोला। इस पर विक्रम ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, यूँ जोड़ने के लिए मितव्ययी बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। इस पर सौरभ समझाते हुए बोला, पर तुम यह भूल जाते हो कि बचपन में हम जैसी आदत डाल लेते हैं वही बड़े होने पर भी बनी रहती है। इसके कुछ दिनों के बाद की बात है, अचानक ही पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है। देश की रक्षा के लिए बच्चे, बूढ़े सभी में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। रक्षा कोष के लिए स्थान स्थान पर धन जमा किया जाने लगता है। सौरभ के गुल्लक में काफी दिनों से जेब खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे इकट्ठे हो रहे थे। उसने सोचा, इस पवित्र कार्य में मैं ही पीछे क्यों रहूं? उसने अपने सारे एकत्रित धनराशि रक्षा कोष में देने का विचार किया। उसके पास अब तक कुल 470 रुपए जमा हो चुके थे। सौरभ ने अपने पिताजी से जब यह बात कही तो वे बड़े प्रसन्न हुए। मातृभूमि की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है, उन्होंने सौरभ को समझाया। सौरभ को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने 31 रुपए अपनी जेब से और मिला दिए। सौरभ ने उसी दिन 501 रुपए का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री के पास रक्षा कोष में भेज दिया। साथ में उसने एक पत्र भी रखा था जिसमें उसने लिखा था कि आप चिंता मत करिए, देश पर संकट आने पर हम नन्हे नन्हे बच्चे भी एकजुट होकर काम करेंगे और अपना सब कुछ मातृभूमि पर न्यौछावर कर देंगे। तो बच्चों, इस तरह इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक छोटे से बच्चे ने अपने जेब खर्च के बचाए हुए पैसे देश के लिए रक्षा कोष में दे दिए। सौरभ का ऐसा त्याग सभी के लिए प्रेरणा है। अब बताइए बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी?
1: सच में दीदी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी।
2: हमें भी सौरभ की तरह ही देश के लिए त्याग करना चाहिए।
3: जिनको जरूरत हो उनकी मदद करनी चाहिए।
4: दीदी, मैं भी सौरभ की तरह ही देशभक्त बनूंगा।
0: बिल्कुल, अच्छी अच्छी बातों को सीखे और उन्हें अपने जीवन में लागू भी करें, अच्छी बातों से प्रेरणा भी लें। आइए देखते हैं आप सब बच्चे आज क्या सुनाने वाले हैं। सबसे पहले आइए विशेख, आप क्या सुनाने वाले हैं?
5: सॉन्ग
0: सुनाइए।
5: ला

0: आज नहीं तो कल।
1: बहुत ही अच्छा सॉन्ग था
2: अभिषेक का। इसी के साथ कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने को है। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह हम बता देते हैं कार्यक्रम का पता। तो बच्चों, पत्र भेजने के लिए आप नोट कर ले कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद दीदी।

नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में। एल्बम का नाम है राजा पिया जानी।

खून बहल नस नस में देख के गुलामी।

आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

इसी के साथ है कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं विनय विहारी, संगीतकार आशीष वर्मा और आवाज़ है सुगम सिंह की। एल्बम का नाम है शिव धाम जे आवेला।

अब आइए बद्री बहार की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं। इसके गीतकार हैं अशोक शिवपुरी और संगीतकार भी हैं अशोक शिवपुरी। एल्बम का नाम है मोहब्बत पुकारे।

अब आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। धनंजय धड़कन और शिल्पा राज की आवाज़ों में। इसके गीतकार हैं ब्रिजेश बिहारी और संगीतकार उज्ज्वल कुमार। एल्बम का नाम है सुन रे संवरिया।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: नमस्कार। और वंदे मातरम का ये 150वां जन्मवर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे

आतंक के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वन्य मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन में कर रहा हूँ वो सब समग्र वन्य मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वन्दे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वन्दे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज़्यादा वन्दे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वन्दे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वन्दे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है, वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आर केन थाक तुमी। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास, ये छोटा गांव है, अश्विन शुद्ध अष्टमी के दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत, वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वन्दे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वन्दे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वन्दे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंदमठ कादंबरी में हुआ। आनंदमठ कादंबरी में वन्दे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वन्दे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंदमठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके। हर एक संग्राम को एक

वर्ण गर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी वर्ण गर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली। और वो दिन था 7 अगस्त 1905, बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मूकपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसॉर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मूकपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कान्हे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हे 1909 फिल्म से।

वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। तो वंदे मातरम का उपयोग केवल मराठी या हिंदी फिल्म में किया ऐसे नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग किया है। अब हम सुनेंगे तमिल फिल्म भारती, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। ये वंदे मातरम तमिल रूपांतर है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्रकवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता

सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलैयराजा ने किया है। इलैयराजा ने केवल दो फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया, इसमें एक हिंदी है, एक ओरिजिनल वंदे मातरम है और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णन।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जनप्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबुज द्वीपे राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है।

जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म रीडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था।

आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी। उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रणगीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौर्य इनकी धुन। पंकज मौर्य न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौर्य द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष, ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीत का है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और GM दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त GM दुरानी, संगीत का ज्ञान दत्त।

ये संगीत रचना है तिमिर बरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिर बरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

यार रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद्र गुप्ता। हेमेंद्र गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आत्मस्वरण से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जनस्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा

दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहाँ एक और ओछ और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बावी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है अनंग मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो

0: भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने। संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े

0: 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में इंदिवर की रचना आपने सुनी उषा मंगेशकर की तर्ज थी। फिल्म थी साजन बिना सुहागन।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर की आवाज़ थी। सावन कुमार की रचना आपने सुनी, बिपिन सचदेव और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दोगाना था, मोहम्मद रफी, सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आप आई बाहर आई इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ। तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी, तो नींद नहीं आए, कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार, कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे पिया की पुकार, कि घर आजा संग साजन झूला झूली, अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुई मुई हुई गवा, झरने पानी से इठलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है। क्या क्या छुपा है सावन की बूंदों में, जरा दिल से पूछिए। दिल का राग, कभी दूरी कभी कोई पास पास, छोटे छोटे झरनों की अंगड़ाइयाँ, तालाब पोखरों।

नदियों में उमड़ता पानी, हरियाली हर तरफ, मवेशियों के लिए चारागाह, हल बैलों के घुंघरुओं की रुंझुन आवाजें जैसे घन बरसता हो। रात कभी कभी बिजलियों से सिहर जाती है। क्या रात, क्या शामी, क्या सुबह, सब भीगे अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सावन क्या कुछ छूटा, इस सावन क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन। क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओ, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

मधुरा तो सचमुच नाच उठता है सावन में, और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने

0: प्रेम पाती धरती के नाम लिखती हो, कहीं मेघ मल्हार की तान, तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इथलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं। कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप ज़रूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं ज़रूर बताइए और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा, तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।
1: बीना,

मला सिन्हा और शमी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओ। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी वो गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का की उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना लयबद्ध होना ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

चलिए, फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज़ में कमर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती, उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं, जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छिलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज़ और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है, इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं, कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है, आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब

सजाया जा रहा है और श्री हरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, क्या किए मन क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होठों पे मीठा मीठा राग। और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आपकी पहेली है।

कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आपकी पहेली है।

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज़ में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब द शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियाँ हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नज़रिए से, तो प्रदेश है। यहाँ पर हैं अलग अलग, तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है चारों ओर, छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन

का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं। हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएँ और कन्याएँ विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओं जो जोंगू क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है। तो नैना क्यों बरसे? बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात में रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज़ सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफ़र का इंतज़ार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती हैं कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

जैसे को तैसा फिल्म का गीत आपने सुना, रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफ़ी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूं के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता अर्जुन गवाणकर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें थीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा इसी गीत के।

हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहां ने। इन्होंने लिखा है आज़ाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर प्रशांत, सचिन सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागवेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाही गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के गए इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाज़ें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा, रमा ताई, सीमा ताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत

पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश, अनिजा, विमला, शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा, रमा ताई, सीमा ताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है ये। बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: मादर, मादर, नहीं, आप सब लोग कुछ छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जज की आवाज, मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनता किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
4: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
5: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
6: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
5: क्या मतलब?
6: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
5: ये बात और कोई भी जानता है?
6: नहीं।
5: पाठक भी नहीं?
6: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
3: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर, वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर

0: कैद पाए हैं। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, काम नहीं, आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
1: ओ, ये कौन आ मरा इस समय? कौन है?
2: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
1: क्या
2: है? गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
1: ओह हाँ, आओ।
2: नमस्कार कामनी जी।
3: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
2: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
1: तुम जरा जल्दी आ गए।
2: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कॉपी। ठीक है तो मैं जाऊं।
3: सिगरेट पीजिए, जल्दी भी क्या है?
2: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
3: बैठिए बैठिए, क्या जल्दी है?
1: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
2: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
1: हमारी निजी बातें थी।
2: निजी बात? ओ हाँ, समझा। आप लोग शायद है, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
1: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
3: क्या हुआ केशव जी?
2: जी
3: आप नाटक पढ़िए ना, देखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
2: जी जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
1: क्या? तुम जानते हो?
2: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
3: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
2: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
3: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
2: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
3: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
2: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
1: आत्मकथा लिख लाए हो?
2: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
1: ये क्या झमेला है?
2: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
1: क्या कहा?
2: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं,
1: तो तुम जानते हो?
3: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
2: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़ ये भी, किस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
3: हाँ हाँ पढ़िए ना।
1: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
2: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
1: अच्छा?
2: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
1: उम्र क्या है?
3: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला

0: की बात कर रहे हैं।
1: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
2: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
1: और वो कहता था, अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
0: और क्या?
1: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका आपका रूप ऐसा है
2: के क्या
1: के शेखर इन पर जान दे।
2: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
1: जी गोरा।
2: रंग गोरा है,
0: गोरा।
2: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
1: अजी बहुत चाला। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
2: देखो केशो, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
1: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
2: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
1: अच्छी बात है।
2: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
4: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
5: हाँ भाभी।
4: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
5: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
4: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
5: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
4: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
5: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
4: वो अफ्रीका से लौट आया है?
5: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो, इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
4: अरे कैसा है?
5: गोरा, भूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
4: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
5: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में नहीं
4: अरे आता। ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी कर

0: चैन से जिंदगी बसर करो।
1: भाभी आप समझती क्यों नहीं,
2: जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एक एक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो
1: तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
0: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
2: अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
0: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनहूस घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
3: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
4: हाँ जानता हूं, लेकिन अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
5: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे।
4: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
2: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
4: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
2: नहीं, उसका एक दोस्त है।
4: कैसे परेशान कर रहा है?
2: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
4: मतलब
2: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
4: और तुम ये सब ना मानो
2: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
4: उस आदमी का नाम क्या है?
2: शेखर खोसला।
4: शेखर खोसला?
2: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
4: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
2: क्यों?
4: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
2: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
4: एक शब्द भी और कहा तो गला घोट दूंगा।
2: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम उससे शादी करना चाहते थे।
4: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश

0: की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकुर मर जाएगा और ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकुर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुतबुत खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। सजा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकुर आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आवाज कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्रों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूत किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
2: केशव जी,
0: कहिए जी।
2: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
2: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
3: और क्या?
2: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
2: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
2: सुनिए कवि जी।
0: जी।
2: कल शो है ना?
0: हाँ।
2: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी।
2: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
2: कवि जी।
0: जी जी।
2: आप आ गए?
0: मैं बिल्कुल आ गया।
2: चलिए, ये पहली पंक्ति के तो टिकट हैं।
0: टिकट?
2: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
2: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
0: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
2: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो, मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला? देखो आपके उस खूबसूरत चितचोर को।
0: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
2: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
0: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति

0: A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। आज जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
1: शेखर खोसला
0: जेल की कोठरी।
1: हाँ, पूरा सच।
0: बकली
1: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
1: शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ, इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हो? जवाब तो हाँ या ना। रात को कदमाई मिली है, जिसे तुम कायर प्रेमी चट्टू भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। पर शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों हो? चुप क्यों शिखर? जवाब तो, उससे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो शिखर, मुझसे बातें करो।
2: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया।
2: हाँ, बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे रादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी। लेकिन उसकी जो ये थी, क्या कहते हैं, अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही। हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है, ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है। और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है। अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने चट्टे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया उसमें सारे कैरेक्टर्स। वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमड़े लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है, वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियाँ मौसी चाचियाँ होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात। हाँ। वाह,
2: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है।
2: हाँ।
1: वो भी बताइए।
2: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
2: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस की इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए हैं अभी तक, वो कुछ 58 चार्ज होता, तो क्या अब
1: एक बार की सलाह पे 58, यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
2: तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी,

0: के बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए।
1: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना। अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
0: शरारती भी
1: और दूसरे पे हावी होने वाला। और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला। और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला, वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया, कब करें। तो मैंने कहा कौन से रोल करना। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना, बासु। और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फला निमका, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनी वन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम। एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ। तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर। और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत सुंदर रोल्स।
0: और वहां पर फिर दीप्ति चली आई
1: और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था। और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है। तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारा मासूम।
0: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल,
1: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है
0: जी,
1: इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली माय एंटायर करियर। इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
0: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
1: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
0: ओ गॉड
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही,
0: लेकिन
1: थोड़ा
0: वो
1: थोड़ा
0: प्रोसेस में था।
1: नहीं जी। लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी न कभी कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर। और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
0: वाह ये भी बात है। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
1: जी।
0: और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना, तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में
1: इसमें वो पटकथा
0: का हिस्सा बनती जाती है।
1: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, और उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने

0: बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुन झुन झुन झुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में, झुन झुन झुन झुन झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हैवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो, का बॉल है वो, बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया वह ठाक करके
1: क्या
0: मारता
1: बढ़िया,
0: है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
1: वो
0: रोंगटे खड़े हो
1: एहसास
0: गए।
1: हो रहा है।
0: इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का,
0: जी
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली
0: जी
1: गई थी।
0: बिल्कुल।
1: मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूं
0: हाँ
1: ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चॉल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चॉल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया
0: हाँ
1: और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं क्या मजे
1: हाँ
0: की बात है ना, बंबई की खास चॉल पुणे में।
1: पूना
0: एंड
1: में
0: दिस इज फिल्म यार,
1: जी।
0: यू नो फिल्म ए टू जेड, फिल्मी एवरीथिंग इज फेक, तो ये भी फेक ही है, चॉल भी फेक है हमारी, लेकिन चॉल फेक नहीं है,
1: हाँ,
0: पोजीशनिंग फेक है।
1: पोजीशनिंग फेक है कि
0: हाँ
1: वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बम्बई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़िया लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए, फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करें मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं बम्बई की चौल और पूना में क्यों। तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पूना गए
1: जी,
0: और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए,
1: वाह
0: जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट
1: शॉर्टलिस्ट
0: की।
1: किए।
0: हाँ और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग्या चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड था, चौल
1: आंगन।
0: के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्ट्रेड और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से बैलुस्ट्रेड।
1: बिल्कुल,
0: और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहां के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखी है वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा
0: कथा
1: फिल्म
0: में
1: में बंबई की चौल बन
0: बन
1: के
0: गई
1: हमेशा के लिए अमर हो गई, है
0: बिल्कुल।
1: ना? ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं
0: कौन सा
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे
0: कितनी
1: कदम
0: वो
1: रखा
0: इतना
1: था।
0: प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ
1: जी
0: कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो
1: ये भी
0: आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं।
0: जी।
1: कौन

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ, सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज़ द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परूलकर पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई उनके गाँव में,
0: नायगांव
1: गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिलिए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मैके चली गई, फिर वापस आ गई।

0: बेचारी जाएगी कहाँ, बच्चे उसके 3-4 और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते देखते यार सोमा क्या है वो, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने ही आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर
1: इंसान के जुझारूपन की मिसाल।
0: जुझारूपना की क्या मतलब किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है। वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ मतलब उसकी सौत। तो
1: बिल्कुल
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई,
1: जी
0: फिर वो कुआ हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा गाड़ा, गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम, हाँ बम्बई में रहकर।
1: जी
0: मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाला मतलब। कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहां वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा संकरा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल
1: जी
0: ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा, हाँ। लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर,
1: जी
0: 40 40 मिल मजदूर एक कमरे में, हाँ। तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई, देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ एक 6 फुट जगह मिलती है। कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मेरा अपना
1: आम
0: डायलॉग
1: जीवन से
0: लिखता
1: आया
0: है।
1: है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी, टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया
0: जुड़ गया। और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल
0: इज
1: एरिया।
0: द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीड़ी वर्क्स, हाँ। निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो
1: जी
0: वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे उन पर, वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी, और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई, तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
1: उड़ रहा है।
0: उड़ रहा है और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी

0: हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है
1: जी।
0: इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी 5वीं फिल्म थी
1: जी।
0: मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम,
1: हाँ वो आपने खुद लिखा है
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी।
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल

0: एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम। हाँ,
1: वो आपने खुद लिखा है?
0: जी
1: ये भी
0: जी
1: कमाल की बात
0: या,
1: है।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया।
1: जी
0: बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए दो जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अम्बटनी की, केरल का मशहूर कैमरामैन,
1: जी
0: और जी एस भास्कर ने बम्बई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: दोनों ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते
0: जी
1: हैं,
0: सही बात
1: है
0: है,
1: ना
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी। यहां मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहता हूं, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे,
1: जी
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड, सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर।
1: वाओ
0: एंड नाना, इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना, एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था, परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला,
1: जी
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून।
0: जुनून, एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया, कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ, मैं करूँगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका आता है, लेकिन उसने हराया, यस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं, वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूँगी देख लूँगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी, मेरी बेटी विनी की, नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये 2 बार हुआ, 2 बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे, और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, फिल्म तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में, अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी, और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, उसने
1: लो
0: स्क्रिप्ट था ये कहे ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो, लोगों को
1: खतरनाक
0: मालूम
1: वाला
0: है
1: है।
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बात मेरा भी एकदम से मेरी

0: घंटी बजी। फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा, वगैरह वगैरह जो भी तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ, तो गया गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम, बाकी अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कह तो दिया जोर से, फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर
0: तो
1: बाद?
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे? कहते हाँ, सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था,
1: अरे
0: नहीं तो
1: बाप
0: हो तुम औरत हो इसलिए बच गई करके
1: जी
0: धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया, तो वो निकल गया। फिर हम चुप, वेरी
1: ड्रामेटिक सीन।
0: ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था, और वो
1: हाँ
0: ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना बोलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज़ हमेशा वाली, हाँ काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज़ में, अगर आज कितनी बजता शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आज? हाँ तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता है मैं 3 बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: क्या
0: मतलब
1: बात है, प्याले
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: में तूफान।
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ,
1: जी
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड, तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, और मे
1: जी
0: बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया
1: हाँ
0: कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: कहा बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा, तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का, मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकते।
1: बहुत शानदार,
0: एंड नाना लाफ्ड एंड एंड एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब
1: अद्भुत
0: लोग उठ के तालियां बजा रहे, और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है। उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया
0: हाँ
1: इसलिए आप बच गई,
0: हाँ
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन
0: नहीं,
1: गौरव
0: भगवान की
1: पुरस्कार दे
0: दुआ
1: पा रही
0: मानती
1: हैं।
0: हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई नाना को
1: बिल्कुल, क्या
0: सुनूँ।
1: बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, कहता है है है, फिर हाथ डालता है और देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके बस। तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
0: माथे
1: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है।

0: तो और
1: वाह,
0: फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है। तो वो
1: जी
0: छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
1: कितना सुंदर
0: है।
1: है, कितना
0: तो
1: सुंदर।
0: दैट्स, सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म
1: जी
0: एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस। आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा में।
1: जी एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
0: हाँ वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा होता है कि नाना नाना भी अब पहुंच गया है। नाना मतलब वसंत, वसंत और सोमा अब दोनों दोस्त बम्बई पहुंच गए हैं और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गांव, पैसे ही नहीं है। और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती, उसकी बीवी वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका, हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर,
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। होता है कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है। तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट।
1: जी
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहाँ वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा, बसंत और सोमा भी साथ है और वो रो रही है। और वो कहते हैं कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, शीशे और कुछ तो चारा होगा। तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो
1: जी
0: कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह। कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था
1: जी
0: क्योंकि एक वहाँ ये था जहाँ कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, हाँ, तो टॉप शॉट था और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, हाँ, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है। एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोना लेते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है। और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले।
1: अद्भुत
0: मतलब ये
1: अद्भुत
0: या क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स।
1: क्या बात है, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत थी।
1: जी कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो
0: हाँ
1: इसलिए मैं चाहता हूं कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपिया का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह,
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन

0: ये था।
1: आंदोलन का, मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें। एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो, जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी। देन द गर्ल विनी माई डॉटर, हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु इज स्टडिंग समाजशास्त्र,
0: समाज
1: लेकिन
0: मानवी की
1: हाँ, लेकिन आदिवासियों की,
0: जी।
1: शी स्टडिंग ट्राइबल्स, और इसलिए वो इस जंगल में आई है। और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली। तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मज़े का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी? देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, वो भील या डागर या महादेव कोळी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं, और उनकी भाषाएं अलग हैं थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करे फिर? बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म, यू कॉन्ट टेक लिबर्टीज विथ एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे हैं कि ये परी कथा है बड़ों के लिए,
0: जी
1: तो वाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल। यू ना भींड है, ना भील है, ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस। एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, दे आर
0: यस
1: ऑल वेरी बिलीविंग, हाँ, एंड दे आर ऑल वेरी स्केयर्ड, इनसिक्योर, एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लविंग। तो ये सब जो हैं, तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतर बन नाम दिया जंगल को, मंतर बन।
0: जी
1: और फिर भाषा, भाषा क्या करें? फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो, लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाँक थी उसमें,
0: बिल्कुल
1: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। फिर
0: गजब।
1: हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी
0: अरे वाह।
1: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक, दोनों इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं, सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, ये सही भाषा थोड़ी है
0: गजब गजब
1: ना
0: गजब
1: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं
0: जी
1: नहीं वो गलत बोला, गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब,
0: जी
1: हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली,
0: जी
1: बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन।
0: जी
1: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ, और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में, या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में, या स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने,
0: जी
1: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स
0: जी
1: अलॉट।
0: ये गाना सुनते हैं।
1: जी क्या बात, बोले।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था, डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फाइनेंशियल लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंशियल। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट, हाँ। सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह। सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी। बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज़ वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या क्या? ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कम साल हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, ही सेड आई वाज हिज नंबर वन सपोर्टर। तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट। सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह। फिर

0: बड़े हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड, अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। ही मेड एवरी थिंग पॉसिबल। वेर एवर वी वेंट, वी हैड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस टू स्टे, वी हैड अ फॉरेस्ट एक्सपर्ट कमिटी टू गाइड अस, वी हैड अ फॉरेस्ट रेटिन्यू, हाँ, बॉडी गार्ड एक्सेट्रा, वी हैड जीप्स, क्या नहीं बोलो, एंड परमिशन एवरीवेयर। ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, यू नो। सो वी शॉट ऑल ओवर, फैंटास्टिक, एंड इट वाज, इट रियली वेंट आउट वेरी वेल।
1: क्या बात है!
0: इट्स सैड दैट द फिल्म डिडंट, पीपल हैव नॉट सीन इट सो मच।
1: जी जी जी, अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाएं।
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
1: जी।
0: हाँ, और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, हाँ, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है। फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट। अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर सा।
1: जी, जी।
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे।
0: लवली,
1: क्या नाम होगा।
0: आई लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
1: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी,
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
0: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है।
1: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर,
1: आगे कभी बात करेंगे।
0: तो किए ना,
1: मुझे पता नहीं था,
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की। थोड़ी ज्यादती है इतने
0: अच्छा
1: सारे सवाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की
3: गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नम शिवयम, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीएनएस राजशेखरन और पुदुचेरी भाजपा के अध्यक्ष वीपी रामलिंगम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हजारों लोगों ने इस रैली में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले श्री शाह गोरीमेदु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। पुदुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण

0: उत्साह होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में चीनी के भंडारण की स्थिति, उत्पादन और आवश्यकताओं का आकलन किया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन, इसे हम आकाशवाणी पटना से रिले करेंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण आज आप सुनेंगे शाम 5:35 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त

दोस्त, इस पर विशेष, साथ ही विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि है 10 अगस्त को। 6:05 पर हम लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीत गांव घर। जी हां, ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद का योगदान। इस विषय पर वार्ताकार सुरेंद्र सिंह से एक वार्ता।

शाम 6:40 पर सुनिएगा सांझगीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल हम लेकर आएंगे शाम 7:00। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आज आप सुनेंगे 7:15 से। शाम 7:25 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और तदुपरांत जिले की हलचल।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद हम लेकर आएंगे शाम 7:50 से। शाम 8:30 से आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का भाग संख्या 6। रोजाना की तरह समाचार संध्या आज आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 8:45 पर। रात 9:00 हम लेकर आएंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा और 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात 9:30 पर हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। हमारे सासाराम केंद्र से रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग रात 10:00 से रात 10:30 तक और सुनवाएंगे आपको चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत रात 10:30 से रात 10:55 तक। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर आएंगे रात 10:55 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रात 11:00 और अंग्रेजी समाचार 11:05 पर आप सुनेंगे। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर।

तो ये था कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो रहे हैं। वंदन कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाते हैं आपको हरिहरन की आवाज़ में महेंद्र देहलवी का लिखा हुआ एक भक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई सुरेंद्र कोहली ने है और एल्बम है 4 धाम।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महादेव से बड़ा ना कोए। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं भगवान शिव की महिमा और उनकी सर्वशक्तिमानता को सबसे अच्छे से दर्शाती हैं। जब दुनिया पर भरोसा टूट जाता है तो हम सब जाते हैं महादेव की शरण में और फिर हमारा भरोसा नहीं टूटता। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी भक्तगण भगवान शिव की पूजा अर्चना में तल्लीन हैं, तो इसीलिए हमने भक्ति संगीत कार्यक्रम में अभी आपको सुनवाया। चार धाम एल्बम से लिया गया हरिहरन की आवाज़ में ये भक्ति रचना, जिसे लिखा था महेंद्र देहलवी ने और संगीत था सुरेंद्र कोहली का। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम के अंत में चलिए सुनवाते हैं आपको साक्षी कुमारी की आवाज़ में राकेश धामा का लिखा हुआ एक भक्ति गीत, जिसे संगीतबद्ध किया सुरेंद्र कोहली और अमर उत्पल ने। एल्बम है मेरे शंकर भोलेनाथ।

मैं दुनिया की ठुकराई, मैं द्वार तुम्हारे आई। साक्षी कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे मेरे शंकर भोलेनाथ एल्बम से लिया गया ये भक्ति गीत। हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

इसमें कईगो कार्यक्रम आयोजित कल जा रहा बा। काल पटना में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकालल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यात्रा सवेरे 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकली। प्रदेश में अभियान के तहत हर ब्लॉक के 4000 तिरंगा उपलब्ध करावल जाई, जेकर आपूर्ति जीविका के माध्यम से हुई। यह तिरंगा यात्रा में मंत्री, अधिकारी या भारी संख्या में लोग भी शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेवे वाला सब स्वतंत्र सेनानी आंदोलनकारियों के श्रद्धांजलि अर्पित कैले। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि यह वीरन के साहस हमेशा हर भारतीय खातिर प्रेरणास्रोत बनल रही। प्रधानमंत्री कहले कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होके भारत छोड़ो के आह्वान देश की आजादी के लड़ाई में नया ऊर्जा लेके आयल। वो कहले कि यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पावे खातिर भारतीय जनता के अटूट संकल्प के देखवलस। बिहार विधानसभा की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार काकोरी षड्यंत्र में शामिल वीर सपुतन के देशभक्ति के याद करत कहले कि काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम के अमिट अध्याय है, जे देशभक्ति और बलिदान के अभूतपूर्व मिसाल पेश कैलस। मानसून के प्रभाव से राज्य के अलग अलग हिस्सन में लगातार बरखा के माहौल बनल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान किशनगंज जिला के गलगलिया आ जिला गया जिला के मदनपुर में भारी बरखा भइल बा। विभाग के मुताबिक गलगलिया में सबसे ज्यादा 128.6 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कल गई। उहें मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बरखा भइल बा। यह दौरान नालंदा के राजगीर में 56 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलल। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान कैमूर, रोहतास आ किशनगंज जिला के कईक हिस्सन में भारी बरखा के येलो अलर्ट जारी कैले बा। उहें सिवान, गोपालगंज और बक्सर जिला में वज्रपात के साथ साथ आंधी तूफान के आशंका जतौले बा। रेलवे श्रावणी मेला 2026 के लेके आरा जसीडी के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलावे के फैसला किले बा। ये ट्रेन 9 अगस्त से 30 अगस्त तक हर इतवार के चलत रही। यह ट्रेन से बाबा बैद्यनाथ धाम जाय वालन श्रद्धालुओं के यात्रा में काफी आराम मिली। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार काम में लापरवाही अनुशासनहीनता के खिलाफ जिला के अवतार नगर, तरैया, अमनौर के थानाध्यक्ष सब के निलंबित कर देले बाड़े। सोनपुर के सब तरीके से विकास के लेके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कल गई। बैठक में सोनपुर क्षेत्र के आवे वाला समय के जरूरत के हिसाब के विकास करे, ढांचागत सुविधा के मजबूत करे या सुचारू पिए वाला पानी के आपूर्ति जैसन मूलभूत जरूरतन पर विचार विमर्श भइल। बैठक के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी कहले कि सोनपुर के खाली पटना के विस्तार के रूप में सीमित न रह के एकर स्वतंत्र पहचान वाला एगो आधुनिक नियोजित आर्थिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कल जाए। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के अंक यही समाप्त भेल।

0: तो श्रोताओं लीजिए सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण।
1: विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं आज 9 अगस्त है। बीता हुआ कल यानी 8 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत छोड़ो आंदोलन

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। आज के दिन यानी 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद जनता ने खुद ही आंदोलन की कमान संभाली तथा देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुए। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सख्ती से दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय ब्रिटिश राज को अब और सहन नहीं कर सकते तथा इसी से स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। श्रोताओं, आशा है आपकी भी यादें ताजी हो गई होंगी। अब चंद रोज में ही हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। इस राष्ट्रीय त्यौहार की बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शिक्षण संस्थान हो या अन्य प्रतिष्ठित, हर जगह तैयारियां की धूम है। तिरंगे की शान और राष्ट्रगान की सुर लहरियां अद्भुत वातावरण पैदा करती हैं, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव होता है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व हाथी दिवस और विश्व अंगदान दिवस की भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इस अंक के वैज्ञानिकों की चर्चा से करते हैं। इस अंक के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और इरविन स्क्रोडिंगर। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे विक्रम अंबालाल साराभाई एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी और दूरदर्शी उद्योगपति थे। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। विज्ञान एवं यांत्रिकी के क्षेत्र में वर्ष 1966 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1972 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों की स्थापना की, जिसमें जादूगोड़ा स्थित भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड भी शामिल है। 6 अगस्त 1971 को 52 वर्ष की उम्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हो गया। श्रोताओं, इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक हैं 12 अगस्त 1887 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अरविंद श्रोडिंगर एक प्रतिभाशाली भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने प्रमात्रा यांत्रिकी में कई मौलिक परिणाम विकसित किया। इनके द्वारा प्रतिपादित श्रोडिंगर समीकरण एक तंत्र के तरंग फलन की गणना का एक तरीका प्रदान करता है। अलावा इसके इन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी, ऊष्मा गति की, पैरा वैद्युत तथा सामान्य आपेक्षिकता

0: इसके अलावा गगनयान का पहला 16वें ग्राउंड टेस्ट भी हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। वहीं दूसरी ओर नासा आर्टिमिस मिशन की तैयारियों में जुटा है। आर्टिमिस मानव युक्त परीक्षण उड़ानों की श्रृंखला के तहत नासा स्पेस एक्स के सुपर हेवी वर्जन 3 रॉकेट बूस्टर के साथ अपने मून लैंडिंग प्रोग्राम आर्टेमिस 3 की निरंतर विंड टनल टेस्टिंग कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार दंत चिकित्सा के इतिहास में इंसानों पर पहली बार ऐसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जो टूटे या गायब दांतों को प्राकृतिक रूप से दोबारा उगाने में मदद कर सकती है। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें। और अब बात कर लेते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस का, जिसे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार यह दिवस 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। दरअसल 10 अगस्त 1893 को जर्मन वैज्ञानिक सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से अपने ईंधन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इसी ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए यह दिन चुना गया है। जैव ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी कमी आई है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मददगार है। भारत सरकार ने कचरे से धन की अवधारणा को अपनाते हुए सतत जैसी योजनाएं लागू की है। इसके तहत कृषि अवशेषों और गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जा रही है। भारत सरकार ने 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में राजेश नारायण जी।
1: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर जाने माने शिक्षाविद श्री राजेश नारायण। राजेश नारायण जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: राजेश जी, डीजल पेट्रोल इत्यादि पर हमारी निर्भरता हमें किस मुकाम पर ले जाएगी? एक तो इनके भंडार सीमित है, दूसरे प्रदूषण वर्धक भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया और आपके विचार भी इस पर बिल्कुल सटीक हैं। ये प्रदूषण के कारक तो हैं ही, साथ में इनका भंडार अत्यंत सीमित है, कभी न कभी इनको समाप्त होना है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके इनका उपयोग करना, जो हमारे पास बचा हुआ है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उसे संरक्षित करें, उसे कुछ न कुछ बचा करके रखें। और उस पर हमारी निर्भरता तो निश्चित तौर पर बहुत बुरी है, वैकल्पिक साधनों की तरफ हमें जाना ही होगा।
1: जी,
2: अगर
1: जी।
2: हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं, अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या विकसित देश के रूप पर के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अन्य स्रोतों की तरफ ध्यान देना होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या यहाँ की बहुत बड़ी है और हर व्यक्ति तक ऊर्जा की खपत की आपूर्ति खपत के लिए आपूर्ति निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना हम तभी कर पाएंगे जब इन स्रोतों की तरफ हम ध्यान दें, इसलिए उन पर निर्भरता होना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं।
1: अब दूसरी तरफ प्रदूषण वर्धक भी है।
2: जी निश्चित तौर प्रदूषण के तो बहुत बड़े कारक हैं और उस प्रदूषण से प्रदूषण केवल लोगों में ये जागरूकता तो लाई जानी चाहिए कि प्रदूषण से तो उनका स्वास्थ्य अपना स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि जब कभी विश्व में किसी तरह का कोई संकट आता है वैश्विक स्तर पर, तो निश्चित तौर पर वो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो ये जो स्रोत हैं डीजल और खनिज तेल, जिनके बारे में भी आपने बात की, कोयला, तो इन पर निर्भरता तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। महंगाई का बढ़ना, लोगों का अपने जीवन स्तर को लेकर के चिंता करना, ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई है। तो उससे तो निश्चित तौर पर हटना चाहिए हमें और वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता जितनी लाई जा सके उतनी लाई जानी चाहिए। हम संरक्षण को भी बढ़ावा दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकें और नए स्रोतों की तरफ जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका बेहतर तरीके से

0: सदुपयोग कर सके।
1: राजेश नारायण जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हाथी को भारतीय सनातन परंपरा में काफी मर्यादित स्थान प्राप्त है। गणेश जी का प्रतिरूप हम हाथी में सदियों से देखते रहे हैं। हाथी एक विशालकाय प्राणी है जिसे बहुत ही ऊर्जावान जीव के रूप में देखा जा रहा है। प्राचीन काल में हाथी राजाओं के सवारी के रूप में देखे गए। एरावत नाम का हाथी पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र के चमकीले श्वेत रंग के दिव्य हाथी की याद दिलाता है। यह समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक था। इसे हाथियों का राजा और पूर्व दिशा का दिग्गज भी माना जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा। यह दिन एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण, उनके सामने आने वाली चुनौतियों जैसे हाथियों के अवैध शिकार, प्राकृतिक आवास, कीमती और मानव हाथी संघर्ष इत्यादि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 से हुई थी। हमारे देश में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने वाले इस विशाल जीव के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 22,446 है। इसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए 14 राज्यों में कुल 33 हाथी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। हम सबको हाथियों के प्राकृतिक आश्रय को छिन्न भिन्न होने से बचाने में आगे आना चाहिए। पेड़ और जंगलों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। श्रोताओं, अब 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंग दिवस की बात कर लेते हैं। हालांकि हमारे देश में भारतीय अंगदान दिवस अभी हाल ही में यानी 3 अगस्त 2026 को मनाया गया है। इन दोनों ही दिवसों का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और जीवन बचाने के लिए उन्हें इस महादान के लिए प्रेरित किया जाना। साथ ही अंगदान के प्रति लोगों में व्याप्त नकारात्मक विचारों एवं भ्रम जाल को तोड़ना तथा उन्हें अंगदान के पंजीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना भी इस दिवस का मुख्य लक्ष्य कहा जा सकता है। आमतौर पर आम लोगों में सिर्फ नेत्रदान और रक्तदान ही ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ यह जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेत्र के अलावे गुर्दा यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, हृदय, फेफड़े, आंत और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज भी दान किए जाते हैं। अंग दान करके हम जरूरतमंद व्यक्ति को नई जिंदगी प्रदान करते हैं। अब इस अंगदान में कौन कौन सी बातें खास है, इन्हें जानने के लिए हम आपको सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अफीफ अली से की गई बातचीत सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए इस बातचीत के संपादित अंश।
3: डॉक्टर अफीफ अली, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: थैंक यू
3: डॉक्टर साहब। विश्व अंगदान दिवस को याद करते हुए हमारे श्रोताओं के लिए सबसे पहले आप यह बताएं कि अंगदान का क्या महत्व है।
4: जी, ऑर्गन डोनेशन अंगदान जो एक ऐसा विकल्प है जिससे किसी की जान बच सकती है, ये इसी तरह है जैसे किसी को एक नई जिंदगी देना। एक इंसान ऑर्गन डोनेशन से 5 से लेकर 9 इंसानों को नई जिंदगी दे सकता है। हम सब जानते हैं कि सभी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है और सभी बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता है, जिसमें से कुछ बीमारी है जैसे कि किडनी की एक डिजीज है, इसको CKD कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, या फिर एक लीवर की बीमारी है जिसको CLD कहते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज। जो अगर ये बीमारी लीवर और किडनी की स्टेज 4 में चली जाती है, जिससे वापस ठीक होना मुमकिन नहीं है, और जो किडनी और लीवर का जो जो ऑर्गन का जो फंक्शन

0: है वो खत्म होने लगता है, उस वक्त ये जरूरी होता है कि हमें लीवर या किडनी को बदल दिया जाए। तो जब बीमारी स्टेज 4 से ज्यादा हो जाती है तो उसमें हमें ऑर्गन डोनेशन की जरूरत होती है। इंडिया में हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है ऑर्गन की कमी की वजह से। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व इन बीमारियों के लिए है, जैसे कि CKD, CLD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ये सब बीमारी जो है, इन सब बीमारियों में ऑर्गन डोनेशन की बहुत ज्यादा महत्व है। और ये भी बात है कि जो कॉर्निया होता है, जैसे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है इंडिया में, उसमें ये होता है कि जब कॉर्निया की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से इंसान देख नहीं पाता है, तो कॉर्निया को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये एक तरह से टिश्यू ट्रांसप्लांट है, किसी को एक नई रोशनी दी जा सकती है।
1: डॉक्टर आफिफ अली,
0: जी
1: अब हमारे श्रोता आपसे यह जानने को उत्सुक हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति अंगदान कर सकता है।
0: जी अंगदान 2 तरह से होता है। एक तो होता है लिविंग डोनर, जो कि इंसान जब जिंदा रहता है तभी अपना अंग दान कर सकता है, और
1: जी
0: दूसरा होता है एक डेड डोनर, जो कि मर जाता है उसके बाद फिर इंसान अपना अंग दान कर सकता है। तो दोनों तरह से अंग दान किया जा सकता है। जब लिविंग डोनर, जो इंसान जब जिंदा होता है तो उस वक्त जब अंग दान होता है उससे पहले इंसान की जनरल कंडीशन, की किस तरह से उसका हेल्थ है और हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके लीवर सही है कि नहीं, किडनी सही है कि नहीं, इस चीज का जानकारी पहले प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उसका HLA मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग किया जाता है। दोनों व्यक्तियों का अगर ब्लड ग्रुप मैच करता है, HLA मैच करता है, तभी ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल होता है। अगर HLA मैचिंग नहीं होगा, ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होगा, तो फिर वो ऑर्गन ऑर्गन जो है वो रिसिस्ट करता है। और ऑर्गन जब डोनेट किया जाता है उसके बाद जब जिसके बॉडी में जाता है उसके बॉडी में जा करके उसका बॉडी टिश्यू उसको अगेंस्ट अटैक करता है और वो खराब हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग ब्लड ग्रुप और HLA मैचिंग करते हैं। और तीसरा ये है कि उसके जो ऑर्गन है उन दोनों के बॉडी के साइज के हिसाब से ऑर्गन का मैचिंग किया जाता है, कि किसी का ऑर्गन ज्यादा बड़ा तो नहीं है या बॉडी साइज इक्वल रहेगा तभी वो ऑर्गन डोनेट किया सकता है। तो ये हो गया आपका लिविंग डोनर, जो कि इंसान जब जिंदा है तब होता है। और एक होता है डेड डोनर। डेड डोनर मतलब इंसान जब मर गया उसके बाद उसका ऑर्गन को निकाल के रिट्राइव कर दिया जाता है और जिसके बॉडी में पहुंचाना है उसके बॉडी में दे दिया जाता है। तो डेड डोनर में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ब्रेन डेड होते हैं, जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से उनको रखा जाता है। ब्रेन डेड में मेनली हो गया कि अगर किसी इंसान को मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इंजरी हो गया, स्ट्रोक भी हो सकता है, या मतलब ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या फिर कोई इंजरी हो सकता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उस स्थिति में हम लोग वेंटिलेटरी सपोर्ट पे उसको रखते हैं और ऑर्गन को जब जो उसके मरने से पहले ही हम लोग ऑर्गन को रिट्राइव कर लेते हैं और रिट्राइव
1: जी
0: करके फिर उसको डोनेट कर दिया सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 तरह के डोनर हैं। अब कौन कौन उसको दे सकते हैं, तो उसमें ये है कि 18 साल से वर्ष की उम्र से ज्यादा जो भी कोई भी व्यक्ति है तो वो ऑर्गन डोनेशन के लिए उसको उसको कंसेंट दे सकता है। 18 साल से वर्ष से ज्यादा उम्र है तो वो ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट कर सकता है। अगर 18 साल से वर्ष की उम्र से कम है तो भी वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पेरेंट या गार्जियन से उनका कंसेंट लेना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब,
0: जी
1: अंगदान दिवस के अवसर पर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में कौन-कौन से अंग हैं जिन्हें दान किया जा सकता है।
0: हाँ जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि पूरे ग्लोबल स्तर पे सबसे ज्यादा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो होता है किडनी का होता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो लीवर का होता है, और उसके बाद होता है हार्ट का होता है। तो किडनी मोस्ट कॉमन है, किडनी सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होता है। किडनी, लीवर और हार्ट, ये तीनों तो ऑर्गन होते ही है ट्रांसप्लांट। इसके अलावा लंग्स ट्रांसप्लांट भी होता है, लंग्स ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और पैंक्रियास को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और इंटेस्टाइन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये तो हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। और फिर हो गया कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक किसी डेड से किसी में, या फिर टेंडन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और स्किन ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो ये सब ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यह तो हुई बात अंगों को जिन्हें दान किया जा सकता है।

0: जी
1: किंतु अंग दान के कितने घंटों के बाद इनका दूसरे शरीर में प्रत्यारोपण होना चाहिए?
0: हाँ, तो अंगदान के कितने घंटों के बाद होना चाहिए, वो सब हर हर ऑर्गन के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लंग्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो अंग को रिट्राइव करने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर ही ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। इसमें सब चीज आएगा, उसको रिट्राइव करने से लेकर के ट्रांसपोर्ट करने से लेकर के फिर दूसरे में लगाने तक, वो ये सब प्रोसेस जो है 4 से 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। उसी तरह से हार्ट जो है वो भी 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। लिवर को हम लोग 24 घंटे तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसके बाद फिर कॉर्निया को हम लोग 14 डेज तक प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉर्निया जो है 14 दिन तक आदमी निकाल के फिर उसको प्रिजर्व करके कॉर्नियल बैंक में, और फिर उसको वापस से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना, मतलब कौन सा ऑर्गेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे तक हम लोग उसको रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, और
0: जी
1: अब अंत में विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ऑर्गेन डोनेशन एक विकल्प है जिसकी वजह से हम दूसरों को दान दे सकते हैं, एक जिंदगी, एक नई जिंदगी दे सकते हैं। किसी के पेरेंट्स का तबीयत खराब है, अगर मान लीजिए क्रोनिक किडनी डिजीज है, CKD है, वो अगर आखिरी स्टेज में है, अगर उसको ऑर्गेन डोनेशन नहीं किया जाएगा अगर, तो फिर उनका बचना मुश्किल है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा महत्व है ऑर्गेन डोनेशन का। और फिर ये है कि ऑर्गेन डोनेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कि सब कोई नहीं ऑर्गन डोनेट करता है, बहुत कम लोग ही ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो हम ये
1: जी
0: संदेश देना चाहेंगे कि हम सबको एक रजिस्टर कम से कम कर देना चाहिए कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है। हमारे जिंदगी के बाद जो है उसमें ऑर्गन डोनेट होगा तो उससे होगा ये कि फिर ज्यादा से ज्यादा लोग बच पाएंगे। तो इस तरह से हमें ऑर्गन डोनेशन को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च
1: बढ़ावा
0: करना
1: देना
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी
1: डॉक्टर आफिफ अली, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

श्रोताओं, ईश्वर ने हमें जिंदगी का वरदान दिया है, तो इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अन्य जीवों के लिए सहयोगी सिद्ध हो सकें। जीव जंतुओं के प्रति दया, करुणा, स्नेह और क्षमा की भावना हमारे पारितंत्र को और भी विकसित करती है। इसी प्रकार मिट्टी, पानी एवं वायु को प्रदूषण से बचाकर हम पूरी दुनिया को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखते हैं। अतः हमारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए न होकर सबके लिए हो, यही भावना रखी जाए।

0: श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक कजरी। गायक कलाकार हैं नीलेश्वर मिश्रा और साथी। आइए सुनते हैं।

नीलेश्वर मिश्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कजरी। और अब इसी के साथ हमारा भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, आज बिहार पृथ्वी दिवस है। एकरा के मनावे के पीछे उद्देश्य ही बा कि अपना राज्य के, अपना जिला के, हमनी के जोन हरित क्षेत्र बा ओकर बढ़ावल जाए, ओकर प्रतिशत बढ़ावल जाए, ताकि बिहार में हरियाली आ जाए, बिहार में चारों ओर बढ़िया से एकदम शुद्ध हवा मिले जंगल मत से। तो यही के उद्देश्य से बिहार पृथ्वी दिवस हर साल 9 अगस्त के मनावल जाला। यह दिन राज्य में पर्यावरण संरक्षण और व्यापक स्तर पर पौधरोपण भी कर होखेला। एकर शुरुआत भई रहे 9 अगस्त 2012 से, और 9 अगस्त के तिथि चुने के पीछे ये कारण रहे कि आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन जो ना कि अगस्त क्रांति कहल जला, वह दिन शुरू भइल और 1942 में शुरू भई रहे। लेकिन पौधरोपण जोन बा हमनी के 9 अगस्त से 2012 से शुरुआत कल गई, और एकरा पीछे के कार्यक्रम ये रहे, एकरा के पीछे के उद्देश्य रहे कि भारत में जोन हमनी के राज्य बा बिहार बा ओकरा के अधिक से अधिक हरित क्षेत्र बनावल जाओ। और आज हर विद्यालय में कार्यक्रम भी भइल, जगह जगह कार्यक्रम मनावल जा रहल बा, लोग पौधरोपण करके, क्योंकि यह महीना जोन है तो सावन भादों के महीना होला, और एकरा में जे पौधा लगावेला वो बहुत जल्दी लाग भी जाला। तो एकरा पीछे उद्देश्य बा कि हमनी के अधिक से अधिक एकरा के हरित क्षेत्र बनावल जा सकेला। श्रोता भाई बहन, आज भारत छोड़ो आंदोलन के जे भी हमनी के देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के जे भी सपूत रहे, वो अपन जान के बाजी लगा के देश के आज़ाद करो लेबा। आज ये के दिन महात्मा गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो और मरो के नारा भी दिले रहें, और ये नारा के असर ही रहे कि गांव गांव में अंग्रेजन के विरुद्ध, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजल और भारत छोड़ो आंदोलन खातिर अंग्रेज विवश भिलन, और बाद में हमनी के 15 अगस्त 1947 के देश आज़ाद हो गए। श्रोता भाई बहन, आज के कार्यक्रम में हमनी के अपना रोजगार खड़ा करें यह पर चर्चा कल जाई। पहले के कहावत है कि आपन हाथ जगन्नाथ, आपन काम सबसे सर्वोत्तम मानल गई बा। अगर रोजगार खड़ा करत नहीं आपन, तो एकरा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई लोग के रोजगार मिलेला, कई लोग के काम मिलेला, क्योंकि सरकारी सेवा में और निजी क्षेत्र के सेवा में अवसर कम बा। ऐसे सब व्यक्ति के सरकारी सेवा या निजी क्षेत्र के काम करे के मौका ना मिल सके, ऐसे स्वरोजगार के बढ़ावा देवे खातिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई तरह की योजना भी चला रहल बा। जोन ओकरा में गतिरोध बा, जोन खड़ा करे खातिर जोन पूंजी चाहिए, जोन व्यवस्था चाहिए, जोन लाइसेंस चाहिए, ओकरा के भी सरल बनावल गिल बा। पूंजी उपलब्ध करावे के, ऋण के रूप में उपलब्ध करावे के भी व्यवस्था कल गिल बा। तो आज हमनी के चर्चा के लिए आपन अपना रोजगार खड़ा करें। आज हमनी के मंदाकिनी सिंह के गावल लोकगीत भी सुनल जाई, बोल होई बरस गए बदरा पिया घर नहीं है। श्रोता भाई बहन, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू भई तो पूरा देश के गांव गांव तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में लोग बिगुल फूकलन। वह समय में हमनी के जोन साहाबाद क्षेत्र रहे, चूँकि आज़ादी से पहले 1972 के पहले तक हमनी के रोहतास, कैमूर, बक्सर

बस्तर और भोजपुर के जो जिला रहे तो शाहाबाद के नाम से जानल जात रहे। तो इस शाहाबाद के क्षेत्र के लोग भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फुकलन और लड़ाई लड़लन, कई एकरा में भारत माता के सपूत सहित बलिदान भी देलन। रोहतास में हमनी के रोहतास के क्षेत्र में बाबू निशान सिंह, बाबू कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से, हर क्षेत्र में हर गांव गांव से लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक के देश के स्वतंत्रता दिवावे में बहुत बड़ मदद के लिए बणन। तो आज स्वतंत्रता आंदोलन में शाहाबाद के का योगदान बा, यह विषय पर हमनी के सुरेंद्र सिंह से वार्ता सुनल जाई। एक जानकारी में हमनी के काकोरी कांड दिवस पर भी संक्षिप्त चर्चा कैल जाई, चला चलत मौसम के पूर्वानुमान पर भी चर्चा हुई। श्रोता भाई बहन, जब अपन रोजगार खड़ा करब तो अपना रोजगार में कई तरह के हमनी के जौन संसाधन बा ओकरा के जुटावे के पड़ेला, क्योंकि अपना बाजार के अनुसार हो जाके बाजार और मांग के अनुसार अपन रोजगार करे के चाहिए, ओकर चुनाव करे के चाहिए। अपन जोना में रुचि होके, जोन स्थानीय मांग होके, जैसे कृषि आधारित उद्योग बा, खुदरा दुकान बा, सेवा के क्षेत्र बा, कई तरह के रोजगार अपन खड़ा कर जा सकेला। और एकरा के रोजगार में सफल होके खातिर प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी बा। हमनी के प्रशिक्षण भी संबंधित क्षेत्र में जोना में रोजगार खड़ा कर चाहतन जा, वो क्षेत्र में हमनी के प्रशिक्षण भी लेवे के चाहिए। एकरा अलावा हमनी के सरकारी पोर्टल के माध्यम से एकरा पर पंजीकरण करावल जा सकेला। जोन रोजगार खड़ा करे में सबसे बड़ा चीज़ है पूंजी के, तो पूंजी के उपलब्धता खातिर भी हमनी के ऋण के स्वरूप में आवेदन करके ओकरा के बैंक के माध्यम से ऋण भी लिहल जा सकेला। एकरा खातिर भी सरकार कई तरह के योजना चला रहल बा। वित्तीय सहायता मिलला के बाद में हमनी के रोजगार अपन खड़ा करतन जा, जोना से कि कई लोग के अन्य लोग के भी काम देवे में सक्षम हो सकतनी जा। श्रोता भाई बहन, राज्य सरकार भी देश में अपना राज्य में लोगन के रोजगार उपलब्ध करावे खातिर कटिबद्ध बा, और नियोक्ता के रोजगार के इच्छुक लोग से जुड़ला और जितना पहले पद रिक्त बा ओइजा भी लोगन के जितना कर्मी बाड़न उनका भी भेजे के व्यवस्था बनावल जा रहल बा। श्रोता भाई बहन, राज्य में जे लोग बा ओकर आमदनी दुगना करे खातिर भी सरकार कटिबद्ध बा, और एकरा की एकीकृत डिजिटल रोजगार समाधान पोर्टल के माध्यम से राज्य के युवा लोग के सुरक्षित आ विश्वसनीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहल बा। ओकरा से का फायदा हुई श्रोता भाई बहन, कि अगर हमनी के जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और कई तरह की योजना जोन चलता ओकरा में अगर हमनी के जा तनी जा, वो जा अपन पंजीकरण करावतनी जा, तो हमनी के कई तरह के लाभ मिल सकेला। एकरा से एक तक ही बेरोजगार युवा के पलायन रुकी और रोजगार के अवसर बढ़े। एकरा खातिर हमनी के राज्य सरकार बिहार है तैयार पोर्टल लॉन्च भी कैले बा। एकरा माध्यम से हमनी के चंद मिनट में ही अपन आवेदन भी कर सकतनी जा, और घर बैठल एकर आवेदन हो सकेला, और एकरा माध्यम से हमनी के रोजगार के अवसर भी ढूंढ सकतनी जा कि कहाँ कहाँ का कल जा सकेला। राज्य सरकार हर जिला में रोजगार उपलब्ध करावे खातिर कटिबद्ध बा, और एकरा के प्रशिक्षण से लेके हर तरह के जानकारी भी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हमनी के ले सकतनी जा। तो श्रोता भाई बहन, आई चर्चा के बाद अब हमनी के सुनल जाओ ये लोकगीत। आज के कलाकार बानी मंदाकिनी से, बोल बा बरस गए बदरा पिया घर नहीं आए।

0: श्रोता भाई बहन, अभी हमने के सुनत रहनिया जाए एगो लोकगीत, बरसाती गीत। कलाकार रहनिया मंदाकिनी सिंह जी, तो यहाँ के बहुत बहुत हमने के धन्यवाद दिल जाओ कि बहुत सुंदर गीत सुनोने। यहाँ कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश बात आई सुनल जाओ। ये संदेश
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्र से करें।

0: विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
0: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
0: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
2: श्रोता भाई बहन, अभी हमने क्या सुना था इंडिया को संदेश। स्वतंत्रता के आंदोलन में शाहबाद क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहल बा। ई जाके कई भारत माता के सपूत आपन जान के आहुति देके देश के स्वतंत्र करावे में सहयोग के लिए बणन। तो स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद के का योगदान बा, आई यह विषय पर हमने के वार्ता सुनल जाओ। वार्ताकार बानी सुरेंद्र सिंह जी, आई सुनल जाओ ये वार्ता।
3: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। महर्षि विश्वामित्र, राजा रोहितास, बाण भट्ट और शेर शाह की धरती

शाहबाद वासियों में आस्था नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि उक्त कंपनी के शासन का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। देश की केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया था। नोखा के पहलवान सिंह एवं दिनारा के धौल सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी। पहलवान सिंह ने तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ वाराणसी के राजा चेत सिंह की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में शाहबाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जगदीशपुर निवासी बाबू कुंवर सिंह ने आरा, बीबीगंज, आजमगढ़, अतरौलिया, जगदीशपुर आदि अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से युद्ध किया। उस युद्ध में अमर सिंह, निशान सिंह, धर्मन बीबी, हाजी बेगम आदि अनेक लोगों ने सहयोग किया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में शाहबाद वासियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। इस लड़ाई में शाहबाद के लोगों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। अंग्रेजों का दमन चक्र चलता रहा। बाबू निशान सिंह को 7 जून 1858 को सासाराम में तोप से उड़ा दिया गया। हरकिशन सिंह को जगदीशपुर चौक पर फांसी दे दी गई। असंख्य निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई, लेकिन शाहबाद वासियों ने सत्ता का विरोध जारी रखा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय श्री डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। कुल्हड़िया के विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। शाहबाद में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1904-5 के रूस जापान युद्ध के परिणाम से भारतवासी अत्यंत उत्साहित हुए। कलकत्ता में दीपावली मनाई गई। उक्त घटना का शाहबाद वासियों पर भी प्रभाव पड़ा। उस समय शाहबाद बंगाल प्रांत का भाग था। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता में शाहबाद के लोगों की काफ़ी संख्या थी। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद चलने वाले बंग भंग आंदोलन का भी प्रभाव शाहबाद वासियों पर पड़ा। 1909 में बहुआरा निवासी भवानी दयाल सन्यासी ने सासाराम में आर्य समाज की स्थापना की। सन्यासी जी महात्मा गांधी के नज़दीकी थे। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाना और कुरीतियों को दूर करना था। महात्मा गांधी की चंपारण अभियान का भी शाहबाद पर प्रभाव पड़ा। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं, सरकारी स्कूल कॉलेज, कोर्ट कचहरी आदि के बहिष्कार की घोषणा की। उन्होंने 17 अगस्त 1920 को क्वाथ, विक्रमगंज, सासाराम में पधार कर जनता का आह्वान किया। शाहबाद में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ किया। चीनी से बनी मिठाई के बदले आम जनता गुड़ ही मिठाई का उपयोग करने लगी। कोर्ट कचहरी का बहिष्कार कर पंचायती के माध्यम से शाहबाद के लोग मुकदमों का निपटारा करने लगे। सरकारी स्कूल कॉलेजों का विद्यार्थियों द्वारा बहिष्कार किया जाने लगा। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों में सरदार हरिहर सिंह चौगाई, रघुवंश नारायण सिंह पिपरा, सरजू मिश्र शाहपुर, विद्याचल प्रसाद आरा आदि छात्रों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आंदोलन में शिक्षकों ने भी भाग लिया। श्री बिहारी लाल वर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री रामायण प्रसाद जैसे हिंदी लेखकों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आरा के 8 भारतीय सिपाहियों ने नौकरी छोड़ दी। 6 अप्रैल 1921 को शाहबाद जिले के हर भाग में सत्याग्रह दिवस मनाया गया। आरा, सासाराम, रामगढ़, बक्सर, डेहरी आदि जगहों पर सभा की गई। स्वराज कोष एकत्रित किया गया। सत्याग्रह दिवस का उद्देश्य सदस्यता अभियान चलाना और एकत्रित राशि से प्रांत में 40,000 चरखे चलवाना था, ताकि अंग्रेजों का वस्त्र उद्योग चौपट हो सके। भभुआ और मोहनिया थाना में मुठिया प्रथा का प्रचलन था। एकत्रित चावल से कांग्रेस का खर्च चलता था। असहयोग आंदोलन में साधु संघ ने भी सहयोग किया। असहयोगी साधुओं में स्वामी विश्वानंद और स्वामी सत्यानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1922 में चौरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। 12 मार्च 1930 को उन्होंने 78

सहकर्मियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः महात्मा गांधी ने नमक बनाने का एकाधिकार कानून को तोड़ा। नमक कानून भंग किए जाने का देश भर में स्वागत हुआ। 6 अप्रैल 1930 को आरा में श्री रामायण प्रसाद की अध्यक्षता में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। श्री रघुवंश नारायण सिंह ने नमक सत्याग्रह के आरा केंद्र का नेतृत्व किया। भकुरा, आरा, कुल्हड़ियाँ, बीरमपुर, कोइलवर, जमीरा के लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। बक्सर नमक सत्याग्रह केंद्र पर डुमराव, चौगाई, इटाढ़ी, राजपुर के लोगों ने श्री जयप्रकाश लाल के नेतृत्व में मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस सत्याग्रह में श्री चंद्रशेखर सिंह, सरदार हरिहर सिंह, राम वृक्ष सिंह, जगदम्मा सिंह आदि ने भाग लिया। सासाराम सत्याग्रह केंद्र पर डिहरी, ऑनसोन, सासाराम, दरीगाँव, करहगढ़, कुदरा आदि के लोगों ने भवानी दयाल सन्यासी के नेतृत्व में नमक बनाया। उक्त कार्यक्रम में ठाकुर राजकिशोर प्रसाद सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी आदि प्रमुख थे। भभुआ, जगदीशपुर आदि स्थानों में भी नमक कानून भंग किया गया। बक्सर केंद्र पर निर्मित नमक को स्वयंसेवक बेचते समय जोर जोर से बोलते थे, गुलामी हजम करने की पुड़िया है, नमक की पुड़िया नहीं, अमृत की पुड़िया है। भभुआ अनुमंडल के बरेज ग्राम के श्री बब्बन सिंह ने नमक कैंप लगाया। पुलिस ने सूचना प्राप्त कर बब्बन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने अधिवेशन में ऐतिहासिक भाषण करते हुए करेंगे या मरेंगे का जनता को मंत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा इस प्रयास में मर जाएंगे। केंद्र सरकार के आदेश पर महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी समेत शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना 9 अगस्त को आरा पहुंची। 10 अगस्त को छात्रों की जुलूस ने कचहरी को बंद करवा दिया। संध्या नागरी प्रचारणी सभा के मैदान में एक सभा हुई। छात्रों ने रेलगाड़ी पर अधिकार कर उसे स्वराजी रेलगाड़ी बना दी। बक्सर, ब्रह्मपुर आदि स्थानों में तिरंगा फहराया गया। आरा और बक्सर अनुमंडल के एक दर्जन से अधिक स्थानों में सरकारी इमारतों में लूटपाट की गई। जगह जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। सासाराम और भभुआ अनुमंडल में जगह जगह तिरंगा लहराया गया। 10 अगस्त को डिहरी उच्च विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय का बहिष्कार किया। 11 अगस्त को सासाराम में नौजवानों का विशाल समूह एकत्रित हुआ। सरकारी भवनों पर तिरंगा लहरा दिया गया। रेलवे स्टेशन जला दिया गया। 12 अगस्त को डॉक्टर रामसुभग सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। प्रशासन ने दमन चक्र चलाया। 14 अगस्त को सासाराम के अनुमंडलाधिकारी मिस्टर मार्टिन ने जगदीश प्रसाद नामक छात्र को गोली मार दी। जीटी रोड पर फौजियों के साथ जनता की मुठभेड़ भी हुई। सैनिकों की गोली से महंगू राम, जगन्नाथ राम तथा जयराम सिंह शहीद हो गए। भभुआ में अंतु राम हजाम भी शहीद हो गए। 16 अगस्त को घटाओं में रेल की पटरी उखाड़ने के प्रयास में केशव राम साहू, रघुवीर मुसहर, रामजनम सिंह तथा बुद्धू राम सैनिकों की गोली से मारे गए। दुर्गावती प्रखंड के दिनेश दत्त गिरी ने भभुआ अनुमंडल कोर्ट पर अधिकार कर लिया और स्वयं को SDO घोषित कर स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई का आदेश दिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने दूर संचार तथा यातायात की व्यवस्था को ठप कर दिया। 16 अगस्त 1942 को डुमराव में पुलिस की गोली से कपिल मुनि कमकर सहित 4 लोग शहीद हो गए। 28 सितंबर 1942 को आरा में कैलाशपति सिंह को प्रशासन ने पकड़ लिया। उनके हाथ में राष्ट्रीय झंडा था। उनके साथ प्रशासन ने अमानवीय एवं बर्बर व्यवहार किया। अंत में उन्हें गोली मार दी गई। अगस्त क्रांति के दरमियान शाहबाद में 1500 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 50 लोग शहीद हुए। ब्रिटिश सरकार ने सेना और दमन के बल पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जन जागृति रोकने में अक्षम सिद्ध हुई। अंततः भारत वासियों के त्याग एवं बलिदान के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद के हजारों व्यक्ति जेल गए। कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कई हजार लोगों ने भूमिगत रहकर स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में शाहबाद के नेताओं को कुंवर सिंह और अमर सिंह से बलिदान से

0: सदैव प्रेरणा मिलती रही। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देना चाहिए, उनके संस्मरणों को लिपिबद्ध करना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम की अमिट गाथा को याद कर हमें भारतीय गणराज्य की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। शाहबाद के जिन सपूतों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना अमूल्य समय दिया, उनमें बाबू जगजीवन राम, भवानी दयाल सन्यासी, डॉक्टर राम सुभग सिंह, कैलाशपति सिंह, सरदार हरिहर सिंह, जगन्नाथ प्रसाद सिंह, हौलदार त्रिपाठी, जयप्रकाश लाल, रामनगीना चौबे, अब्दुल कयूम अंसारी, लक्ष्मी नारायण सिंह, सखीचंद डोम, हरिकिशुन चौधरी, गिरिजा प्रसाद कहार, सूर्यनाथ चौबे, बुधन राय वर्मा, सरदार रमिंदर सिंह, जय नारायण सिंह, रजाक गांधी, राजा राम गुप्ता, बसामन सिंह और राम इकबाल बरसी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद वासियों ने जो अमूल्य योगदान दिया, वह भारत के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके त्याग बलिदान से आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी।
1: बहुत बढ़िया योगदान, बहुत बढ़िया जानकारी देनी है सुरेंद्र सिंह जी कि स्वतंत्रता आंदोलन में शाहबाद के सपूत लोग के का योगदान रहल बा, कैसे एजा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ल, तो यह जानकारी खातिर हमने के श्री सुरेंद्र सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जा। श्रोता भाई बहन, आज जोन है तो काकोरी कांड के भी 9 अगस्त 1925 के भई रहे, तो आज ही के दिन काकोरी ट्रेन कांड भई रहे। आज के दिन हमने के जे स्वतंत्रता आंदोलन के जे भारत के सपूत लोग रहन, वो शाहजहाँपुर से लखनऊ जाए वाला जोन 8 नंबर डाउन ट्रेन रहे, ओकरा के काकोरी गांव के निकट हमला करके रोक दिले रह, और ब्रिटिश सरकार के जोन धनराशि रहे, जोन खजाना रहे, ओकरा के जब्त करके लूट के और आंदोलन खातिर, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन खातिर संसाधन जुटावे के प्रयास के लिए रहन। आज के दिन ऐसे भी महत्वपूर्ण बा। श्रोता भाई बहन, अब चलत चलत आज के मौसम के मिजाज पर हमने के एक नज़र डालल जाओ। आज अधिकतम तापमान जोन रहल हो तो 31 डिग्री सेल्सियस रहल हो, और न्यूनतम तापमान जोन बा तो 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कइल गइल बा। श्रोता भाई बहन, मौसम आज सामान्य रहल बा, आसमान साफ बा, कहीं से भी तेज वर्षा के अभी तक सूचना नहीं है, रह सह के कहीं कहीं बादल छोले रही और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकेला। श्रोता भाई बहन, आज के कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहनिया संतोष कुमार जी, तो अब कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दी। सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी हिंदी फिल्मी गीत। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मी गीत में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में बलम परदेसिया फिल्म का एक गीत, जिसे लिखा है अनजान ने और संगीत है चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी फिल्मी गीत मोहम्मद रफ़ी और ललिता देवलकर की युगल आवाज़ में। मोती बाने इसे लिखा था, सी रामचंद्र का संगीत।

था और इसे हमने लिया था फिल्म मोरे राजा हो से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। सांझ गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ में नदिया के पार फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अभी आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत गीत नदिया के पार फिल्म से। और अब इसी के साथ सांझ गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा देते हैं। जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई बे। इस फिल्म से आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

0: गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की युगल आवाज़ अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में, और अभी आपने इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग सुना। इसी के साथ ही हमारा आज का सांझ गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, राजेश हूँ। एक बार फिर से एक और अंक ममता का आंचल वैसे दंपतियों के लिए, जी हाँ, जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए लेकिन अभी भी बच्चा नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। दिमाग में अगर आप ये लेकर बैठे हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है या ईश्वर की यही मर्जी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा नहीं होना एक छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनसे मिलिए। ढेर सारी बातें होंगी आज के कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को राजेश को लेकर आने का मौका दिया अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के IVF सेंटर श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने, जो कि पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है, और यहां होती हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार और हर कार्यक्रम में स्टूडियो में होती हैं। आज भी हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर लिख लीजिए। नंबर है 9162562266 9162562266। ये नंबर हमने आपको बताया है और लिखवाया इसलिए है कि जिनके घर में भी ये समस्या है, पास पड़ोस में समस्या है, आपकी नजर में किसी के पास भी ऐसी स्थिति है, तो आप उसको ये नंबर 9162562266 अवश्य दे दें। और रखने के लिए नहीं, बात करने के लिए बेहिचक बात करें डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से, जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, IVF विशेषज्ञ हैं, IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। सबसे पहले तो मैं

0: सबको बधाई देना चाहती हूँ कि सावन आ गया है। और राजेश जी, हम लोग भी देखते हैं कि सावन में हर साल हजारों कांवरिया जल लेकर के शिव जी के पास जाते हैं। हर के मन में कुछ ना कुछ मन्नत होता है, कुछ ना कुछ चाहत होती है कि वो पूर्ण हो जाए। बहुत लोगों का ऐसा भी चाहत होता है कि उन जो निसंतान रहते हैं वो चाहते हैं कि उनको
1: बच्चा
0: हो जाए। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से होता है। तो हम मानते हैं कि आपका जो इस बार का जो चाहत है या सपना है वो जरूर पूरा हो जाए।
1: हाँ, बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं ना कि कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए। और यहाँ ये कर्म है वैसे दंपत्तियों के लिए कि सही डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज कराना, अपनी परेशानियों को जानना। नहीं तो एक सवाल उठता है मेरे मन में, डॉक्टर श्रद्धा पूछ ले आपसे,
0: बिल्कुल,
1: कि कब तक इंतजार करें?
0: बिल्कुल, आस्था बहुत जरूरी है, मन में श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: लेकिन ये भी जानना चाहिए कब तक आप खुद से प्रयास करें।
1: हाँ।
0: और कब आप डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास मिलें
1: जी।
0: जिस दंपति ने पिछले एक साल से बिना कोई गर्भ निरोधक के जो कोशिश कर रहे हैं संतान के लिए और बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को कहा जाता है निसंतान दंपति
1: जी।
0: वो अभी किसी भी आसपास डॉक्टर से मिल सकते हैं ताकि प्रारंभिक जांच हो और कुछ दवाई उन्हें मिले। और ये देखा गया है कि 70% लोग को इन दवाइयों से ही ठीक हो जाता है,
1: बच्चा हो जाता है।
0: हाँ, हाँ। लेकिन अगर 2 साल हो गए और अभी तक आपको बच्चा नहीं ठहर पाया, जब आप बिना गर्भ निरोधक के प्रयास कर रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल भी करा लिया और अब शादी के 2 साल हो गए या कोशिश करते 2 साल हो गए और
1: हाँ।
0: बच्चे नहीं ठहर रहे, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझेंगे और जब बीमारी पकड़ाएगी तभी सही इलाज हो पाएगा और सही और फिर तभी आपको संतान मिल पाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इलाज होगा तभी ना, जब आपको क्या बीमारी है इस बात का पता चले, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भी आस्था के साथ ही जाना होगा। आपको हम बताते हैं डॉक्टर श्रद्धा का एक बार फिर से नंबर, और नंबर है 9162562266, 9162562266। पैसे की भी समस्या नहीं, श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने यहाँ EMI पर चिकित्सा कराने की सुविधा दी है, और वो भी एक दो इंस्टॉलमेंट नहीं 24 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे सकते हैं। एक और जानकारी दे, इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर अगर आप जाते हैं श्रद्धा IVF जो भिकना पहाड़ी मोड़ पटना में है, तो आपको पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला कंसल्टेशन फी, पहला परामर्श मुफ्त होगा। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है पहला वो मुफ्त होगा। और अगर आप आगे की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वहां एडमिट होते हैं, इलाज कराते हैं, तो अटेंडेंट का रहना फ्री है। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा, ये निसंतानता कितने दिन, क्या सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन एक बेसिक सवाल कि क्या होता है, क्या क्यों होता है ये, क्या ये वंशानुगत भी होता है क्या?
0: बिल्कुल, निसंतानता के बहुत सारे कारण हैं। निसंतानता कभी जेनेटिक भी होता है।
1: हाँ।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसको ठीक किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से।
1: हाँ।
0: कुछ ऐसे कारण होते हैं जो लाइफस्टाइल के साथ कुछ ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब वो चीज जिसे सिर्फ हम लोग अपनी दिनचर्या में जो हम लोग बदलाव करें वही ठीक कर ले, तो आपको जो निसंतानता का दिक्कत है वो ठीक हो सकता है। जैसे कि अगर कोई दंपति, जिस खासकर अगर औरत या पुरुष भी अगर मोटापा से जूझ रहे हैं, तो वो भी एक निसंतानता का कारण होता है
1: जी।
0: क्योंकि मोटापे में अपने आप में वो बहुत सारी बीमारी लाता है। कितने औरत में ये देखा गया है कि जो मोटापा से जूझ रही है उनमें अंडा बनने में दिक्कत होता है।
1: अच्छा।
0: जिसको हम लोग PCOD या PMOS कहते हैं। तो ऐसे दंपति में कहा जाता है अगर औरत सिर्फ अपना वजन कम कर ले, तो उनको अंडा बनने की जो प्रक्रिया, उनके जो

0: अंडादानी में जो अंडा है वो बनने की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी
1: जी, जी।
0: और उनका निसंतानता ठीक हो जाएगा।
1: हाँ, हाँ।
0: और भी काफी चीजें जैसे कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, जैसे वैसे लोग जो
1: तनाव में
0: लोग जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं और तनाव के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कारण है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो ये भी एक कारण है निसंतानता का। साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं,
1: अच्छे से हंसते
0: बिल्कुल हंसते खेलते एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करें, बल्कि ये समझें कि ये जो बीमारी है वो दंपति का बीमारी है,
1: दोनों का
0: हाँ। ना ही सिर्फ पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है या औरत जिम्मेदार है
1: जी।
0: दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराएं, बल्कि दोनों एक मिल करके एकजुट होकर के इस बीमारी को हराएं ताकि उन्हें बच्चा प्राप्त हो। पति पत्नी अच्छा समय बिताएं और नींद जरूर लें। कहा जाता है कि 8 घंटा का नींद बहुत जरूरी होता है और नींद वो समय है जिस समय आपका बॉडी रिपेयर होता है, यानी कि आपका शरीर का जो भी स्ट्रेस लेवल है वो घटता है। तो आप अपना नींद ठीक से लें। कुछ लोगों का आदत होता है मोबाइल बहुत देखना, रात भर रील स्क्रॉल करना, उस आदत को कम करें। जो भी आप रील देखते हैं दिन में देखें, रात में नहीं देखें, क्योंकि रात में आपको पूरा सोना जरूरी होता है।
1: इसके अलावा आगे आप कुछ कहें उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे एक बार फिर से डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266 9162562266। ये तो हुआ कि हम सुधार कर सकते हैं अपने हैबिट्स में।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि जिनको सुधारा नहीं जा सकता या
0: सुधारा जा सकता है लेकिन
1: डॉक्टर की मदद,
0: विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से। निसंतानता के जो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरा होता है वो होता है औरत के अंडादानी में या तो अंडा नहीं बन रहा है या बन के फूट नहीं रहा है। कारण पीसीओडी हो सकता है या उनका अंडा खत्म हो रहा हो। ये बहुत कॉमन है वैसे औरत में जहाँ शादी के बहुत सारे साल हो गए, वो 35-40 की ओर अग्रसर हो रही है, तो वैसे औरत में देखा गया है कि अंडा कम हो रहा है
1: जी।
0: और इंडियन स्टडी ये बताता है कि औरत अगर 30 साल से ज्यादा हो रही है
1: जी, जी।
0: उसी उम्र से औरत के अंडादानी में अंडा कम होने लगता है।
1: अच्छा।
0: तो जरूरी है जो अपना फैमिली प्लान करना चाहते हैं सही समय पे अपना प्रेगनेंसी प्लान कर लें। और वैसे दंपति जो खासकर काम काजी लोग हैं उनके लिए आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी सुविधा आ गया है। खैर ये तो एक चीज हुई, बाकी जो कारण है हो सकता है औरत का नली जाम हो। नली जाम यानी कि नली वो जगह है जहाँ औरत का अंडा और शुक्राणु मिलता है
1: जी, जी।
0: अगर नली जाम होगा तो अंडा और शुक्राणु कभी नहीं मिल सकता है, बच्चे नहीं हो पाएंगे। या फिर कोई दूसरा कारण हो जैसे इंडोमेट्रियोसिस हो या बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो, रसोली हो, टीबी हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, ये भी कारण होते हैं निसंतानता।
1: डॉक्टर से मिलेंगे तब तो पता चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरी है विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। उसी तरह पुरुष में भी देखा गया है कि पुरुष के शुक्राणु कम होते हैं, पुरुष के शुक्राणु का चाल कम होता है, किडनी में वेरिकोसील जैसे या जैसे पहले कभी हर्निया का कोई सर्जरी हुआ है, ये सब भी कारण होते हैं जिसमें पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं वो घट जाते हैं। तो शुक्राणु भी अगर कम होंगे तब भी वैसे दंपति को अपने आप से बच्चा ठहरना मुश्किल होता है और अब जरूरत होता है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और इलाज कराए।
1: इलाज कराएं। हम तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर के पास रहिए, निश्चिंत रहिए, कुछ भी समस्या हो आप डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर श्रद्धा एक बात, या बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि नॉर्मल जो कंसीव करती है महिलाएं और आईवीएफ में जो कंसीव करके और जब गर्भाशय में डाला जाता है बच्चा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आईवीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
0: नॉर्मल जो महिला कंसीव करती है उनमें ये होता है कि ऐसी औरत में भ्रूण अपने आप बन जाता है, भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा अपने आप बन जाता है और वो भ्रूण 9 महीने तक रहता है औरत के गर्भ में और बच्चा डिलीवरी होता है। निसंतान दंपति जिनका खासकर शादी का 3-4 साल से ज्यादा हो गया हो और जिन्हें आईवीएफ की जरूरत हो, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे दंपति होते हैं चाहे कारण कुछ भी हो, पुरुष में कारण हो या औरत में कारण हो
1: जी।
0: लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि औरत में भ्रूण नहीं बन पाता है।
1: हाँ।
0: तो आईवीएफ में हम भ्रूण जो है अपने आईवीएफ

0: लैब में बनाते हैं
1: जी।
0: यानी कि औरत को 10 दिन या 12 दिन इंजेक्शन देते हैं, उनसे अंडा निकालते हैं सुई के माध्यम से, पुरुष के शुक्राणु से मिला के अपने IVF लैब में बच्चा बनाते हैं। जब ये बन जाता है तो औरत के गर्भ में 5 दिन का बच्चा डाल दिया जाता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: यानी कि जो मेन प्रॉब्लम, चाहे जो भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है कि उनमें भ्रूण नहीं बनता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं हम लोग, भ्रूण बना के सीधा औरत में डाल देते हैं, और यही भ्रूण 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है। और जैसे बाकी लोग को डिलीवरी होता है, वैसे ही सामान्यतः इन औरतों में भी डिलीवरी होता है।
1: ये तो विज्ञान की मदद लेकर के और प्रोसेस सेम है, वो तो इसमें कहीं से कोई गलत
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुकी है, खासकर वैसे निसंतान दंपति जो बहुत साल से निसंतानता से जूझ रहे हैं, उनको मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि विज्ञान की मदद लें। और विज्ञान ने IVF जैसे तकनीक दिए हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है, और इसका सक्सेस रेट 60-70% होता है। निसंतान दंपति को अगर वो सही समय पे अपने डॉक्टर से मिलते हैं, इलाज कराते हैं, तो उनको बच्चा ठहर जाता है विज्ञान की मदद से।
1: विज्ञान की मदद लेनी चाहिए, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही कि आज हम और बातें कर सकें डॉक्टर श्रद्धा से। आप सबों के लिए बस इतना ही कहेंगे कि जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, परेशान ना हो, विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, और कोई भी समस्या होना तो 9162562266 9162562266 ये डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, इस पर बात कर ले। IVF बच्चा प्राप्त करने का एकदम बहुत आसान तरीका है। चलने से पहले एक बात आपको बता दें कि अब EMI से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी 24 इंस्टॉलमेंट में पैसा देकर, इसलिए पैसे की भी अब कोई समस्या नहीं रही। चलते हैं, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: ममता का आंचल ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ गतिविधियों पर। तो बता दें आपको कि रोहतास जिले में आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस जब भी पूरे भारत में मनाया जाता है और बात रोहतास की होती है तो रोहतास ज़िले के रोहतासगढ़ का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, रोहतास ज़िले की पहाड़ियों और जंगलों से आदिवासी समाज का रिश्ता सदियों पुराना रहा है। प्रकृति की गोद में बसे इन समुदायों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखा है। रोहतासगढ़ और इसके आसपास का पहाड़ी क्षेत्र आदिवासी समाज के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ खरवार, उराव और अन्य जनजातीय समुदायों की लंबे समय से मौजूदगी रही है। पहाड़ियों में बसे गांवों में आज भी आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन शैली के साथ रहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वहाँ पर लोकगीत का आयोजन किया गया, नृत्य का आयोजन किया गया। साथ ही आदिवासी के जो पर्व और त्यौहार होते हैं उनकी सामाजिक परंपराएं होती हैं और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है, उस पर भी प्रकाश डाला गया।

श्रोताओं, डीडीयू गया जी रेल मार्ग पर सावन के मेला को लेकर 8 अगस्त से 17 अगस्त तक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। विशेष ट्रेन, आप सब एक बार फिर से ध्यान से सुन लें कि विशेष ट्रेन सुविधा 8 अगस्त से 17 अगस्त तक दी जाएगी और यह प्रतिदिन डीडीयू से यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सुबह 9:30 पर खुलेगा। 10:20 भभुआ रोड, 11:00 सासाराम, 11:28 सुबह में डेहरी ऑन सोन और 11:50 सुबह में अनुग्रह नारायण रोड सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 12:05 पर जी हां गया पहुंचेगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सेवा में नहीं रहे शिक्षकों का डाटा हटाने का निर्देश सभी बीईओ को जिला में जारी किया गया है। जी हां, रोहतास जिला में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा 100% अद्यतन करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि ई शिक्षा कोष पर कई ऐसे शिक्षकों का डाटा अब भी मौजूद है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। इनमें मृत शिक्षक, त्यागपत्र दे चुके शिक्षक तथा अन्य कारणों से सेवा में नहीं रहने वाले शिक्षक भी शामिल हैं। तो ऐसे शिक्षकों का डाटा हटाने का विभाग ने सभी बीईओ को जारी किया है निर्देश। कैमूर जिला में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागीय जानकारी के मुताबिक सभी विद्यालयों में खिलाड़ियों के अभ्यास एवं टीम गठन का निर्देश दिया गया है। हम आपको बता दें कि विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग में 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार इन्हीं कक्षाओं के छात्र छात्राएं अंडर 17 एवं अंडर 19 की विभिन्न स्पर्धाओं में भी शामिल हो सकेंगे। इस प्रतियोगिता में सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला स्तर पर चयनित होने वाले बेहतरीन खिलाड़ी आगे चलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। दरअसल जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में निजी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का शानदार मौका मिलेगा। जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, हॉकी, हैंडबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रोहतास जिला में अगस्त माह के अंत में किया जाएगा आयोजन। और श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर जी की आवाज़ में जंगली फिल्म का एक गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं।
1: अभी आप विज्ञापन से पहले सुन रहे थे जंगली फिल्म का गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:25 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त।

7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। पटना में कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा की। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। इस महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: तिरंगा अभियान के तहत राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कल पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकलेगी। इस तिरंगा यात्रा में मंत्री, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे।

0: प्रदेश में इस अभियान के तहत हर प्रखंड को 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। इधर अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की 52वीं बटालियन के जवानों ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया। वहीं सुपौल जिले में तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा और तिरंगा रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में एसएसबी ने ग्रामीणों और बच्चों के साथ तिरंगा रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली के बेस अस्पताल में रक्तदान शिविर के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने काकोरी षड्यंत्र में शामिल वीर सपूतों की देशभक्ति को याद करते हुए कहा कि काकोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम का अमिट अध्याय है, जिसने देशभक्ति और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वराज और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले इस अमर बलिदानियों को देश नमन करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा कार्यशाला सह चिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह में कहा कि शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं हल करेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि परीक्षा में सुधार के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
1: दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे।
0: वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार जल्द ही पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी।
2: मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति ने भी ईमान बेचा तो ये पूरे सरकार पे धब्बा लग, इसीलिए उसके लिए कड़े कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और उस कड़े कानून को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नजर रखने के लिए, परीक्षा सुधारों के लिए काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कमेटी बनाएंगे और पारदर्शी परीक्षाएं हमारी हो।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 नए आपराधिक कानून का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने पुडुचेरी में आयोजित समारोह में यह बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है, ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण के पीएम आवास योजना शहरी के तहत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @EIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सोनपुर के सर्वांगीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोनपुर क्षेत्र को भविष्य की उच्च जरूरतों के अनुरूप विकसित करने, ढांचागत सहूलियतों को मजबूत करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सोनपुर को केवल पटना के विस्तार के रूप में सीमित न रखकर स्वतंत्र पहचान वाले एक आधुनिक, नियोजित, आर्थिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने समस्तीपुर के रोसड़ा में बनने वाले बाईपास का आज शिलान्यास किया। 85 करोड़ के से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले इस बाईपास से सिंधिया घाट रेलवे फाटक और रोसड़ा बाजार को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खगड़िया, बेगूसराय से दरभंगा और समस्तीपुर की ओर जाने वाली भारी वाहनों को भी सुगम मार्ग मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोपालगंज को बेतिया से जोड़ने वाले मंगलपुर पुल के पिलर संख्या 5 के पास से क्षतिग्रस्त स्पैन की मरम्मत का काम IIT और NIT पटना के इंजीनियरों की निगरानी में शुरू हो गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह 5 से 7 बजे तक पुल पर आवागमन बंद रहेगा। श्रावण मास की दूसरी सोमवारी को लेकर आज सुबह से ही अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसमें बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हैं। शिवभक्त गंगा का पवित्र जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल और वाहनों से रवाना हो रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ घाट और पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। कांवरिया पथ और घाटों पर लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम भी मुस्तैद है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पटना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अंगदान के लिए जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंगदान से हम किसी व्यक्ति के जीवन में नए प्रकाश का संचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सारण जिले के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए दिखवारा, मांझी, परसा, अमनौर, एकमा, गड़खा, इसुआपुर, जलालपुर, मशरक, नगरा और रिविलगंज CHC का चयन किया है। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई है। विभाग के अनुसार गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं मदनपुर में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है।
2: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी, तूफान, बिजली गिरने

0: की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
1: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ जिले के अवतारनगर, तरैया और अमनौर के थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के हनुमान चौक नौटोली के समीप तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। सारण के गरखा और नगरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने डकैती और पॉक्सो एक्ट में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित उज्जवल दृष्टि योजना के तहत 1000 से अधिक मरीजों की जांच की गई। इनमें से 600 से अधिक मरीजों को निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। पटना में कल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा की। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक निर्मित मकान लाभार्थियों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहाँ हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
8: पश्चिम चंपारण जिले में गंडक के तराई क्षेत्र और जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश से गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले दिनों गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद सहायक और पहाड़ी नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सावन शुरू होने के साथ जिले के मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वाल्मीकि नगर के जंगल में स्थित जटाशंकर मंदिर, रामनगर के नर्मदेश्वर मंदिर, बनकटवा के कोटेश्वर नाथ शिवालय, बेतिया के कालीबाग स्थित तिलेश्वर नाथ शिवालय, पियुनीबाग शिवालय और सागर पोखरा स्थित मनोकामना शिवालय में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर गौनाहा प्रखंड के मंगुराहा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग, स्कूली बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि बाघ जंगल के पारिस्थितिक संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले महीने जिले के 8 प्रखंडों में नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से रिमोट के माध्यम से इन महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। चनपटिया प्रखंड के कुमारबाग स्थित राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किए गए। मझौलिया, चनपटिया, योगापट्टी, बैरिया, ठकरा, सिकटा, भीतहा और पिपरासी में ये महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। बगहा में 29.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड के 3 मंजिला अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया। वहीं पतलार में 5.75 करोड़ की लागत से 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।

0: गया। बगहा के विधायक राम सिंह ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों के साथ चिकित्सकों के रहने की भी व्यवस्था होगी। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के दौरान पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम ने बगहा स्थित पशु अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को तत्काल सुधार कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजने के निर्देश दिए। बाल हृदय योजना के तहत जिले में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 23 बच्चों को निःशुल्क जाँच और उपचार के लिए पटना भेजा गया। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर बच्चों को जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल के लिए रवाना किया। जिले के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए दिशा की बैठक हुई। वित्तीय समरणालय सभागार में लोकसभा सचेतक और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार, मंत्री नंद किशोर राम, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जिले के विधायक और बड़ी अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। डॉक्टर जायसवाल ने जिले की कच्ची सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में शामिल करने के लिए अधिकारियों को एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग के बैठक में जिले में 3 नए ग्रिड स्थापित करने की अनुशंसा की गई। बैठक में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री नंद किशोर राम, जिला पदाधिकारी तरुणज्योत सिंह और जिले के विधायक मौजूद रहे। डॉक्टर जायसवाल ने किसानों से बिजली विभाग में आवेदन देकर विद्युत उपभोक्ता बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 1,78,000 विद्युत उपभोक्ता हैं और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बेतिया में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने 183 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा वितरित किया। कार्यक्रम में जिले में पिछले 100 दिनों में हुए विकास कार्यों पर आयोजित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिले की सैकड़ों आशा और आशा फैसिलिटरों ने समरणालय गेट के पास धरना दिया। बिहार राज्य आशा संघ और आशा फैसिलिटर संघ के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में बकाया भुगतान, ड्रेस और मोबाइल रिचार्ज की राशि में कटौती समेत 11 सूत्री मांगों को उठाया गया। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में नरकटियागंज में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए रिश्वत लेते पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को गिरफ्तार किया। आरोप है कि नल जल योजना के रख रखाव के भुगतान के लिए संवेदक से 28,000 रुपए की मांग की गई थी। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के शेखौना में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने विद्यार्थियों से आदर्श नागरिक बनने और देश समाज परिवार के सेवा करने का आह्वान किया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान बेतिया में आवासित 5 माह की बालिका को जिला पदाधिकारी तरुणज्योत सिंह ने दत्तक ग्रहण आदेश के माध्यम से पुणे के एक दंपति को कानूनी रूप से गोद दिया। संस्थान से अब तक 49 बच्चों को कानूनी रूप से गोद दिया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:51:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सभी को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बताना चाहेंगे कि ई मनपसंद कार्यक्रम में हमारे नए श्रोता भी अपनी मनपसंद फिल्म के मनपसंद गाने सुन सकते हैं हमें ईमेल करके। तो हमारा ईमेल आईडी है akashwani.sasaram@gmail.com akashvanisasaram@gmail.com। समय है दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। तो इस समय अंतराल में आप ईमेल हमें भेज सकते हैं और अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में ले लेते हैं ये पहला ईमेल जिसे भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इनकी फरमाइश है दिलवाले फिल्म के गीत कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें। तो बिल्कुल सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। कुछ और श्रोता भी हैं जिनके नाम हम इसी गीत में पढ़ देते हैं। आप हैं

बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोहवाणकर, प्रणीता गोहवाणकर, अर्जुन उर्फ टुकटुक, और आप सब हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। नूरमहल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नारिया नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से हैं निखत प्रवीण, सदफ आरजू, सादिया तस्नीम। गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, आप सभी ने हमें ईमेल भेजा है कुंडलवाडी महाराष्ट्र से। तो चलिए आप सभी श्रोताओं को शामिल करते हैं हम दिलवाले फिल्म के इस गीत में, जिसे गाया कुमार सानू ने है, शब्द रचना समीर की है और संगीत है नदीम श्रवण का।

जी हाँ श्रोताओं, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा। दिलवाले फिल्म का ये गीत कुमार सानू की खूबसूरत आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फर्ज फिल्म से एक गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर जी और उदित नारायण ने, समीर के बोल उत्तम सिंह का संगीत। और इस गीत के लिए हम नाम शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं का। जी हाँ, आप हैं करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं फर्ज फिल्म का ये गीत। जी हाँ, प्यारी सी आवाज़ लता मंगेशकर जी और उदित नारायण की।

देखे भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। फर्ज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ श्रोताओं, हम भी देखे तो क्या देखें इस जहाँ में, जब भी जहाँ भी हम देखते हैं तो आप सभी श्रोताओं का प्यार ही पाते हैं और आप श्रोता भी बेसब्र रहते हैं अपना नाम सुनने के लिए। तो चलिए अब शामिल करते हैं आपके नाम को, और आप हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और

शीतल राजेश, और आप हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो चलिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये बेहद ही मस्ती भरा गीत, जिसे गाया विनोद राठौर के साथ कविता कृष्णमूर्ति ने है। महबूब के बोल हैं, इस्माइल दरबार का संगीत है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मनपसंद। और ई मनपसंद कार्यक्रम में ये अगला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान का आया हुआ ईमेल किया है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने। और इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म दिल का कोई सा भी गीत सुनने का, तो ज़रूर आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। और प्रेम पर्वत, जी हाँ, इस फिल्म का गीत सुनना चाहा वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। तो आपको भी हम दिल फिल्म के गीत में ही शामिल कर रहे हैं। गोगावा से आप हैं हाजी इशाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल किया बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, निधि निखिल वर्मा ने। और आप हैं हमारे नियमित श्रोता नगर पंचायत दिनारा बिहार से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, काशवी, गिल्लू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। आपने बहुत सारे श्रोताओं का नाम एक ही ईमेल में लिखा हुआ है और हम तो आपसे गुजारिश करते हैं कि 7 और 8 श्रोताओं से ज़्यादा नाम आप हमें ना भेजा करें। खैर, डाकघर विक्रमगंज से आप हैं अशोक कुमार और कुमारी संजू देवी। राजनगर कांति निकेतन से हैं शारदा पीके गुप्ता, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रूपा इलाहाबादी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिसानी और निमित आहूजा। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, गुंजराज, आरती, आकर्षण, जैसी। और ये हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप हैं अजीज भाई मतीन, शैक भाई, चांद फारूक, फूल वाले।

सैयद खलील, मुबीन भाई, मौसा, करीम, साइक और सलीम। जैसे आपने लिखा है वैसे हमने नाम पढ़े हैं। आप सब हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से। सुदर्शन साह, पल्लवी साह, प्रखर साह, कुशल साह, नीति साह, सुरभि साह, आश्विन साह, मंगला बेन साह, राजेंद्र जी साह, आप सभी श्रोताओं ने हमें ईमेल किया पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। तो चलिए सभी श्रोताओं को हम सुनवाते हैं दिल फिल्म का गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

और ई मनपसंद कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आई मिलन की रात फिल्म से एक गीत, और इस गीत की फरमाइश की। जी हाँ, आई मिलन की रात फिल्म के गीत कसम से कसम हो रब्बा, इस गीत की फरमाइश आई है ओम रेजो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ की तरफ से। तो आप सबको सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत, और आप सब हैं सकीबा, आलिया, कमाल, मिराज, निसार, अकासी, सासाराम बिहार से, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, ज्ञानी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। आप श्रोता जैसे हमें ईमेल लिखते हैं हम भी वैसे ही पढ़ते हैं। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा हैं दतरेंगी से। और आप हैं हमारे नियमित श्रोता फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, सेक्टर 67 यानी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीजी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सरवद, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी, कुमारी हर्षिता देशमुख। आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा दतरेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहवाकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुरहेकर, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो चलिए आप सभी को शामिल करते हैं आई मिलन की रात फिल्म के गीत में। मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

0: आई मिलन की रात फिल्म के इस गीत कसम से के साथ ही आज का हमारा यह ई मेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के भाग संख्या 6 के प्रसारण का समापन तक प्रसारण। तो आइए सुनते हैं।
1: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे,

0: घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, ये वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमज़ोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी हैं जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहाँ की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएँ बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज़ हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज

0: स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी। आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं, बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए, इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वीव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के भाग संख्या 6 के प्रसारण को समापन तक। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
3: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: तिरंगा आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
3: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का

0: सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी

0: चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या, इसे हम अपने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं एक शिव भजन वंदना कुमारी के स्वर में।

भैले ब्रह्म के बेरा सवेरे रुआ जागी ए शिव भोला। अभी आप सुन रहे थे वंदना कुमारी के स्वर में ये शिव भजन, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक बरसाती झूमर प्रेम रंजन सिंह के स्वर में। बोल हैं टिप टिप बदरा बरसे।

अरे की टिप टिप बदरा काबर से टिप टिप बदरा काबर से अरे मोरे अंगनवाना अरे मोरे अंगन

बरसेला सावनवाना प्रेम रंजन सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे। ये झूमर, जी हाँ, ये बरसाती झूमर था। और अब लोकधारा कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए विंध्यवासिनी देवी को। एल्बम है सुनुगिया पहराई रे।

विंध्यवासिनी देवी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। तो अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल में चंद गज़ल। सबसे पहले लीजिए सुनिए गुलाम अली की ये खूबसूरत आवाज़, परछाइयाँ एल्बम में मौलाना हसरत मुहानी के लिखे हुए कलाम को संगीतबद्ध किया गुलाम अली ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल।

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश है गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये जो मशहूर शेर है वो है मिर्ज़ा गालिब का। तो चलिए, इन्हीं का लिखा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत गज़ल हम सुनते हैं। मेहंदी हसन।

मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की गाई हुई इसी गज़ल के साथ ही आज का महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार ही

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में

राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत। एल्बम है देश पर जान लुटाएंगे। जमुना प्रसाद देवीदास गंगवार ने इसे लिखा है। प्रशांत महाबल का संगीत है।

वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं, वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने तिरंगे को सलाम करते हैं, आज़ादी का जश्न मनाएं।

ये शहीदों को, देशभक्तों को दिल में बसाएंगे। जी हाँ, आज़ादी के लिए हम हमेशा अपने देश पर अपनी जान लुटाएंगे, देश पर जान लुटाएंगे। इस एल्बम में अभी आपने सुना कैलाश खेर को, जमुना प्रसाद देवीदास गंगवार का लिखा हुआ ये देशभक्ति सॉन्ग था जिसे संगीतबद्ध किया था प्रशांत महाबल ने। कार्यक्रम में आगे और भी हिंदी एल्बम सॉन्ग लेकर हम आपके साथ रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस संदेश के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रसरंग में। रसरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल की सुरीली आवाज़, दिल गलती कर बैठा है। इस एल्बम में मनोज मुंतशिर और सरदुल राठौर के बोल हैं, संगीत है मीट ब्रदर्स और सरदुल राठौर का।

दिल गलती कर बैठा है, लेकिन आपका यूं दिल में उतर जाना कमाल है। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि आपका यूं दिल में उतर जाना जो कमाल सा है, वो इश्क है या कोई हसीन सा ख्याल है। दिल गलती कर बैठा है, जी हाँ, इस एल्बम का ये बेहद ही खूबसूरत एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम में अगला सॉन्ग सुनवाने जा रहे हैं आपको श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज़, और इनके साथ हैं टोनी कक्कर। तो इनकी युगल आवाज़ है, प्रिंस दुबे के बोल हैं, टोनी कक्कर का संगीत है और एल्बम है बारिश के आने से।

बारिश के इस खूबसूरत मौसम में धड़कनों में बस गया है कोई इस तरह कि अब सांसों को भी ज़रूरत सा लगने लगा है। बेहद ही खूबसूरत अभी आप सुन रहे थे ये एल्बम सॉन्ग बारिश के आने से एल्बम में, और आवाज़ थी श्रेया घोषाल के साथ टोनी कक्कर की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको सचेत टंजन और परंपरा टंजन की युगल आवाज़ को चुरा लिया एल्बम में। इरशाद कामिल के बोल को संगीतबद्ध किया सचेत टंजन और परंपरा टंजन ने, तो आइए सुनते हैं।

मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया। चुरा लिया एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे सचेत चंदन और परंपरा चंदन की युगल आवाज़ में। और अब इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए इसका अंतिम एल्बम सॉन्ग प्रियंका सिंह के स्वर में, इतना ना याद तुम आया करो। जी हाँ, ये एल्बम का नाम है। इस एल्बम सॉन्ग को लिखा है संतोष उत्पति ने और संगीतबद्ध किया राज गाजीपुरी ने।

प्रियंका सिंह के गाए हुए इसी एल्बम सॉन्ग के साथ ही हमारा आज का यह रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से।

प्रियंका सिंह के गाए हुए इसी एल्बम सॉन्ग के साथ ही हमारा आज का यह रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं तड़प फिल्म के गीत से, जिसे गाया है शिल्पा राव और दर्शन रावल ने। इरशाद कामिल के बोलों को संगीत दिया है प्रीतम ने। तो आइए सुनते हैं।

तेरे सिवा जग में मेरा ना कोई और, आँखों के शहर में तेरा था इंतजार, तुमसे ये तुम ही को मांगा है हमने उधार। जी हाँ श्रोताओं, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो साथ हो या ना हो, दिल में कहीं ना कहीं उसकी यादें तो रहती ही हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिल जाता है, और जब दिल से दिल मिल जाता है तो सचमुच ये पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है और हर कहीं बस वही शख्स नज़र आता है। बहरहाल अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गाइड फिल्म का गीत, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को फिल्म मैंने प्यार किया में। असद भोपाली के बोल थे, राम लक्ष्मण का संगीत था। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि शारदा सिन्हा जो थीं वो बिहार की स्वर कोकिला थीं, प्रसिद्ध लोक गायिका थीं, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की। और इन्होंने मैंने प्यार किया का जो ये प्रसिद्ध गीत हमने अभी अभी आपको सुनवाया, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, वर्ष 1979 में गाया था। और इस गाने के लिए उन्हें सीधे तौर पर कोई फिल्म पुरस्कार तो नहीं मिला था, लेकिन लोक संगीत और इस गीत के बाद ही भारतीय संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री 1991 में और पद्म भूषण 2018 में सम्मान दिया था। जी हाँ, 1989 में ये फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, और इसका ये बेहद ही चर्चित गीत रहा था जिसके बाद शारदा सिन्हा पूरे भारतवर्ष में छा गई थी। तो अभी हमने आपको ये गीत सुनवाया, और अब चित्रपट तराने कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आंधिया फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और मनहर उधास की आवाज़ें हैं। अनजान ने इस गीत को लिखा है और बप्पी लाहरी का संगीत है।

आंधिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की युगल आवाज़ में। अनजान के बोलों को संगीत से सजाया था पप्पी लाहरी ने।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। रात के 10:55 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आइए एक नज़र डालते हैं कल हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल हमारे केंद्र की शुरुआत होगी सुबह 5:51 पर आकाशवाणी संकेत धुन के साथ। 5:53 पर आपको सुनवाएंगे वंदे मातरम। 5:56 पर आप सुनेंगे आरंभिक उद्घोषणा और मंगल धुन। सुबह 6:00 सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 6:05 से हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। सुबह 7:30 पर हम लेकर आएंगे हमारे सासाराम केंद्र से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00। हमारे सासाराम केंद्र से देशभक्ति संगीत आप सुनेंगे 8:15 पर। और 8:20 पर सुनिएगा पत्र पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए सुबह 8:45 पर। सुबह 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 9:10 पर सुनिएगा गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे सुबह 9:30 से सुबह 10:00 तक। सुबह 10:00 सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 10:05 पर हम लेकर आएंगे सासाराम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। 10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। सुबह 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। अपराह्न 12:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम कल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 से दोपहर 2:00 तक। दोपहर 2:30 से शाम 5:00 तक। और रात 9:30 से रात 10:00 तक। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से दोपहर 2:00 इलाकाई खबरें 2:05 पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार हम रिले करेंगे 2:15 से दोपहर 2:30 तक। शाम 5:05 पर सुनिएगा उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। शाम 5:10 पर हम लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। 5:35 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:05 पर सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत। 6:10 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। 6:40 पर सुनिएगा भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। 7:00 से प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद हम लेकर आएंगे। शाम 7:15 का समय होगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का। 7:25 से लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए। ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम कल हम लेकर आएंगे रात 7:50 से रात 8:00 तक। और रात 8:15 से रात 8:45 तक। 8:00 से सुनिएगा संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या। लोकधारा 9:00 और बंदगी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 9:15 पर। 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा आज के फनकार। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात 10:00। रात 10:15 पर हम लेकर आएंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग।

और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 10:55 पर सुनिएगा अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान। रात 11 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। और इसी के साथ अब बता देते हैं कल के मौसम का पूर्वानुमान। तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और तदुपरांत अंग्रेजी समाचार। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर

0: अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the fourth spot on the medal table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. Hari!

0: far under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, that is PMAYU and PMAYU 2.0. Of these, more than 1 crore houses have been completed and handed over to beneficiaries across the country, with around 1 crore of the houses allocated to women. The government has extended the tenure of Director of Enforcement Directorate Rahul Naveen by 1 year from 13th of this month to 13th of August next year. The extension in service will continue beyond his scheduled retirement on the 31st of July 2027. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न हो रही है। कल प्रातः 5:51 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय।